आज का कथन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए।

बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।

0: लाइन सुना देते हैं, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के, मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी

0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब है नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासन

हर चीज जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी, आज वही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े, साड़ियाँ, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी, और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं।

छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती? HMT टाइटन की घड़ी के साथ अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे। बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि

भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था। मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस

ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ही केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमरीका

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का
2: नमस्कार।
1: क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूं आपके सामने बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपनी टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता है?
2: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते, तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुकी होंगी
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल,
1: बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारे सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात की मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है, और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
2: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी
2: दोनों भी है
1: ना।
2: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
2: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना, तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
2: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
2: बहुत ही ज्यादा, यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले

0: उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा किसने क्या लिखा,
1: सही
0: उस पे
1: बात
0: भी
1: है।
0: 250 300 हजारों के लाइक्स होते हैं, तो
1: हाँ
0: ये समय की बर्बादी ही है।
1: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं।
0: हाँ
1: और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
0: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त
1: समय,
0: बर्बाद
1: और
0: हो।
1: सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके
0: हाँ,
1: बाद।
0: अगर हमें क्रोध आ गया तो
1: हाँ
0: हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
0: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है,
1: कि
0: है ना?
1: किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया, हम नाराज हो जाते हैं।
0: हाँ
1: पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं
0: तो
1: सुनाया तो।
0: सुनवा देते हैं गीत।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे
0: भाई,
1: निकालेंगे
0: हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल,
1: भाई।
0: अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है, हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग, बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है। और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली। और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: मांग
0: है।
1: हो गई है, बिल्कुल सही कहा। और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग
0: अलग
1: बनाती
0: बनाती
1: है।
0: है। और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। और साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है। और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल। और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण
0: बुनकर
1: तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके।
1: घर चल सके, उनको एक आजीविका का
0: जी
1: साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था।

0: ये कर्नाटक की मिट्टी, वहां की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
1: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इल्कल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है, कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
0: ज्यादा लगता है,
1: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली, कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहनते जा।
0: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
1: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ।
0: हाँ।
1: यानी आप उसमें बिल्कुल सिर्फ एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
0: उतना ही
1: समय
0: लगता
1: साड़ियां
0: है,
1: भी पहन
0: उसी
1: सकते
0: तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली,
1: हाँ।
0: जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
1: उसकी
0: और
1: बात
0: होता
1: कुछ और होती
0: है ना।
1: है ना।
0: चलिए तो गीत सुन ले,
1: सुनते हैं गीत।

0: सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं।
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता
0: बिल्कुल, एक पन दो कार है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है, वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
0: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: बहुत
0: है,
1: बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे। संयम से काम है।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी, की भाषा का। आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं

0: को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताबें।
1: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: सब कुछ बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना
1: चाहिए। हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा यानी जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: बड़ा होता है। साथ ही एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
0: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें, अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
0: वहीं एक साथी लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया, अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाई गहराइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों

0: नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस
1: क्या
0: होती है।
1: बात है, बहुत
0: बहुत
1: सुंदर
0: सुंदर
1: लिखा है,
0: विचार
1: बहुत
0: जी।
1: सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखे और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करे, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा
0: जी
1: रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए,
0: कि
1: आज नहीं
0: इस
1: तो
0: साल नहीं
1: कल।
0: तो अगले साल आपको परीक्षा
1: हाँ,
0: में सफलता मिल ही जाएगी, और
1: जिंदगी
0: इतना
1: खाली,
0: सुंदर जीवन है
1: हाँ,
0: मिला
1: उसको हम
0: है
1: खत्म कर देते
0: जी।
1: हैं।
0: तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहेंगे, ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर ला के देंगे या
1: हाँ,
0: 2-4 दिन बाद ला कर देंगे। तो
1: बिल्कुल,
0: बचपन से ही उन्हें इस
1: ये
0: तरह से
1: संयम सिखाया जाए। और
0: जी।
1: दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त कर दें
1: समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए, बोलने का
0: कि
1: एक
0: गाना
1: गाना
0: सुना
1: सुनाना चाहिए।
0: सुना

0: और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है, ठंडा होने पर कांच की बन्नी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया जा
1: खा
0: सकता
1: सकती हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है
0: कुछ मुरब्बे
1: ना।
0: और
1: हाँ,
0: अचार
1: यही बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर
0: कर
1: रही
0: रही है
1: है
0: और
1: ना,
0: एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे
1: सुन रहे हैं, तो फिर
0: हैं
1: हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को दें

0: भी आपको लेनी है, साथ में 10-12, ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3 से 4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
1: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
0: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
1: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
0: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं। तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी ना जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में

0: रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में, आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता,
1: संगीत सरिता
0: अभी भी आता है।
1: उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे राम नारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
1: जी हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
1: बताइए। जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
0: क्या बात है।
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
0: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
1: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी? और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले
0: जी जी।
1: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर

0: चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी। किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो
1: वाह
0: बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे
1: गजब।
0: सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी।
1: वाह,
0: तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला
1: वाला है
0: देने
1: वो।
0: वाला था। और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5th ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा। और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें 5 फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया। जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली, और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा। किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी। तो मैं अकेला 1st डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग 2nd डिवीजन में थे।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बढ़िया
0: मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
1: जी जी
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती
0: मैं
1: है?
0: तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है। तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में,
1: जी
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या
1: जी
0: उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे

0: चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा।

0: रखा था, और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना, और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है, और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें, तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया, और रोज़ सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया, और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये

0: मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है।
1: जी
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है
1: जी
0: लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
1: फुर्सत
0: फुर्सत
1: की
0: के रात
1: रातें,
0: दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है,
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।
0: दिल

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे।

0: एक बेंगलोर में दिया था, एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई, उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया, और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ।
1: जी, और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
0: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में, और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्य हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे, जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे। तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे, और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेष्टा हबीज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे, उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
1: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ ख़ास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
0: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने, और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ, तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वनमैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे, तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वनमैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया, तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे, और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने,
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उन को बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे, और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा।

0: है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है।
1: जी
0: वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सब का उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ।
1: ओ
0: ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
1: जी
0: कि
1: जी
0: कोई
1: जरूर।
0: व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख
1: हाँ
0: सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है, और
0: जी
1: एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर, तो
0: हाँ
1: हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और
0: हाँ
1: दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को
0: ये
1: बताइए।
0: जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में। और उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 हैं, एक उनके बारे में भी है,
1: जी जी
0: शीर्षक नहीं दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी,
1: जी
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे।
1: जी
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन,
0: मेरे
1: दोनों?
0: लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना
1: जी
0: तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब
1: कभार
0: मैंने
1: भी है।
0: हाँ ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 1974 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, सिक्स हु डिक्लाइन ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है
1: जी
0: कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी
0: तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए।
1: जी
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ
0: बहुत ही
1: होगा
0: आश्चर्य
1: जैसे।
0: था,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, मगर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी
1: जी
0: भीड़ थी,
1: जी
0: इतना सारा क्राउड था। बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना
1: बिल्कुल
0: उड़ती सी नज़र, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
1: जी
0: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके
1: जी
0: हैं।
1: यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया।
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस
0: इस
1: बात का
0: बात का
1: वादा
0: वादा
1: कर
0: कर
1: लो,
0: लूँ।
1: सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।
0: फिर मिलोगे कभी।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये

0: एक बहुत जरूरी पक्ष है, अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने
1: किसी ने
0: देखा।
1: ना
0: मतलब
1: देखा, बिल्कुल।
0: हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भी हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
1: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक प्रेरणा के
0: जरूरी है
1: रूप
0: कि
1: में
0: हम
1: है।
0: जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ
1: हाँ,
0: तय कर
1: जान
0: सकते हैं।
1: पाएंगे,
0: हाँ, मतलब
1: बिल्कुल
0: वो
1: वाकिफ होना जरूरी है,
0: दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना।
1: बिल्कुल
0: तो वो
1: सही
0: जो
1: कहा।
0: बनाना है खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
1: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है? उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं। तो
1: जी
0: मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो। मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो,
1: जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि
1: जी
0: मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी जी
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो
1: जी
0: ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग-अलग संस्कृति और अलग-अलग विचार और अलग-अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी, सुनते हैं
0: ये
1: ये
0: वाला
1: गाना।
0: सुनता
1: वो है

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं, और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं, और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है, और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी,
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का, 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है, और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो
0: जी,
1: कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान
1: हाँ,
0: बताया, ये भी थोड़ा सा
1: ये
0: बताइए।
1: बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती

0: हैं। राधा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर
1: निर्भर
0: करता है
1: करता है।
0: कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं। और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं, तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है। मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि
1: जी
0: जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
0: हाँ,
1: मुश्किल होता
0: मुश्किल
1: है
0: होता है वो।
1: जी। इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती, एक शांत विचार भी इतिहास की दिशा बदल देता है। और जब उस विचार को एक महिला अपने धैर्य, संवेदना और समझदारी से दुनिया के सामने रखती है, तो वो सिर्फ बातचीत नहीं करती बल्कि वो देशों के बीच भरोसे के पुल भी बनाती है। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे 24 जून के दिन कूटनीति में महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय दिवस की। दोस्तों, दुनिया कभी सिर्फ नक्शों से नहीं चलती, वो रिश्तों से भी चलती है। और रिश्ते सिर्फ बनाए नहीं जाते, उन्हें समझा भी जाता है। यही समझ जब देशों के बीच काम करती है, उसे कूटनीति कहा जाता है। पहले एक समय था जब बड़े बड़े निर्णयों की मेजों पर महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे अंतरराष्ट्रीय बातचीत की दुनिया में उनके लिए जगह सीमित है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि संवाद केवल शक्ति का नहीं, संवेदनशीलता और धैर्य का भी विषय है। संयुक्त राष्ट्र ने कूटनीति में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने, उन्हें अधिक अवसर देने के उद्देश्य से 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ये दिन केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का अवसर है कि समाज और दुनिया की तस्वीर तब और सुंदर बनती है जब हर वर्ग की भागीदारी उसमें शामिल हो जाए। महिलाओं

उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वो देशों के राजदूत हैं, विदेश नीति की विशेषज्ञ हैं, शांति वार्ताओं के प्रतिनिधि हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा भी हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि बातचीत की ताकत कभी कभी संघर्ष की ताकत से कहीं अधिक प्रभावित होती है। कहा जाता है कि जब युद्ध होते हैं तो सीमाएं टूटती हैं, लेकिन जब संवाद होते हैं तो दूरियां मिटती हैं। और महिलाओं ने कई बार दुनिया को संवाद का यही रास्ता दिखाया है। आज का युवा वर्ग भी इस विषय से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि कूटनीति केवल देशों के बीच नहीं होती, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होती है। जब हम किसी विवाद को समझदारी से सुलझाते हैं, जब हम गुस्से की जगह बातचीत का रास्ता चुनते हैं, तब हम भी अपने जीवन में एक छोटी सी कूटनीति का प्रयोग कर रहे होते हैं। और आज के समय में एक जागरूक युवा वही है जो यह समझता है कि समाज केवल ताकत से नहीं चलता, सहभागिता से आगे बढ़ता है। और सुरक्षित समाज वही है जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्राप्त हो।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं होता, वह भावनाओं की भाषा भी होती है। कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग अपनी आत्मा को सुरों में ढाल देते हैं। ऐसे ही महान संगीत साधक थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। आइए अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। 24 जून 1897 को जन्मे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनकी आवाज में केवल कला ही नहीं साधना भी सुनाई देती है। कहा जाता है कि जब वे गाते थे तो श्रोता केवल सुनते नहीं थे, महसूस भी करते थे। उनकी गायकी में भाव इतने गहरे थे कि संगीत सीधे दिल तक पहुंचता था। उन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं माना, बल्कि उनके लिए संगीत एक साधना थी, एक तपस्या थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गए। आपने देश और विदेश में भारतीय संगीत की पहचान को मजबूत किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने यह भी साबित किया कि कला में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, निरंतर अभ्यास और धैर्य भी आवश्यक है। आज के युवाओं के लिए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जीवन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अगर किसी काम को पूरे मन से किया जाए तो वह केवल पेशा नहीं रहता, बल्कि आपकी पहचान बन जाता है।

0: दोस्तों, युवा केवल एक उम्र नहीं होती, युवा एक सोच है, एक ऊर्जा है और एक बदलाव की वह शुरुआत है जो समाज को नई दिशा देती है। जब युवा जागरूक होते हैं तो वे सिर्फ भविष्य की ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित और बेहतर बनाने का काम करते हैं, और इसीलिए आज के दौर में सही जानकारी, जिम्मेदारी और सामाजिक समझ बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं बातों को केंद्र में रखते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं जागरूक युवा सुरक्षित समाज विषय पर वार्ताकार पुनित की एक विशेष वार्ता, जिसमें युवा शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। आइए सुनते हैं।
1: यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और आपका स्वागत है युवाणी के इस विशेष वार्ता में, और आज का विषय है जागरूक युवा और सुरक्षित समाज। दोस्तों, जब हम भारत की बात करते हैं तो दुनिया हमें एक युवा देश के रूप में देखती है। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ युवा होना काफी है या नहीं। एक युवा होने के साथ साथ जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज का युवा जो स्टार्टअप्स की दुनिया में क्रांति ला रहा है और तकनीक के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, वही युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सुरक्षा का मतलब केवल सीमाओं पर खड़े सैनिकों से नहीं है। एक सुरक्षित भारत का निर्माण तब होता है जब हमारे युवा मानसिक रूप से मजबूत हों, नशे जैसी बुराइयों से दूर हों और अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों। दोस्तों, आज का समय सूचना और संचार का युग है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने युवाओं को ज्ञान और अवसरों से जोड़ा है। इसके साथ ही अनेक सामाजिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। महिलाओं की सुरक्षा, बाल

संरक्षण, साइबर अपराध, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, नशाखोरी, मानव तस्करी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं आज भी समाज के समक्ष मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल कानूनों के माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। लेकिन हाँ, आज के रास्ते में कुछ कांटे भी हैं। आज का युवा साइबर क्राइम, फेक न्यूज और नशे जैसी बुराइयों का शिकार भी बन रहा है। क्या ऐसे में हमारा भारत सुरक्षित रह सकता है? नहीं, और इसलिए हमें चाहिए जागरूकता। जब हम सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे कोई अफवाह शेयर नहीं करते तो हम डिजिटल सुरक्षा के प्रहरी बनते हैं। जब हम नशे को ना कहते हैं तो हम खुद को और अपने समाज को बचाते हैं। दोस्तों, युवाओं में नई सोच, ऊर्जा और परिवर्तन की क्षमता होती है। यदि यह ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रयुक्त हो तो समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों और अपराधों को कम किया जा सकता है। एक जागरूक युवा सबसे पहले अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। वह संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के मूल्यों का सम्मान करता है तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा के प्रति भी संवेदनशील रहता है। यही संवेदनशीलता एक सुरक्षित समाज की नींव बनती है। सुरक्षित समाज का अर्थ केवल अपराधों की अनुपस्थिति नहीं है, इसका अर्थ ऐसा वातावरण है जहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और समाज के सभी बिना भय के अपना जीवन जी सकें। जब समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और विश्वास की भावना विकसित होती है तब सुरक्षा का वास्तविक भाव उत्पन्न होता है। युवाओं की सोच और व्यवहार इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यदि युवा लैंगिक समानता, सामाजिक समरसता और मानव गरिमा के मूल्यों को अपनाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा के नाम से जानेंगे। दोस्तों, युवाओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि किसी भी समस्या की रोकथाम जागरूकता से शुरू होती है। जब युवा गलत व्यवहार, भेदभाव, उत्पीड़न या हिंसा के संकेतों को पहचानना सीखते हैं तब वे समय रहते उचित कदम उठा सकते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामुदायिक मंचों पर होने वाले जागरूकता कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वयं सेवा और सामुदायिक भागीदारी भी युवाओं के समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर युवा समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को समझते हैं। इससे उनमें सेवा भाव विकसित होता है और वे समाज की समस्याओं के समाधान का हिस्सा बनते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा केवल दर्शक बनकर न रहें बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाएं। किसी भी अन्याय, भेदभाव या हिंसा को देखकर मौन रहना समस्या को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत जागरूक नागरिक होने के नाते उचित मंचों पर आवाज उठाना, सहायता उपलब्ध कराना और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना समाज को अधिक सुरक्षित बना सकता है। हालांकि यह कार्य कानून और प्रशासन के दायरे का भी विषय है, फिर भी सामाजिक सहयोग और नागरिक जागरूकता इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सुरक्षित समाज का निर्माण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, एक सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। जब युवा अपने विचारों, व्यवहार और कार्यों में सकारात्मकता लाते हैं तब समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। जागरूकता, संवेदनशीलता, अनुशासन और जिम्मेदारी ऐसे गुण हैं जो युवाओं को परिवर्तन का वाहक बनाते हैं। युवाओं की जिम्मेदारी, भूमिका और संभावित योगदान युवा किसी भी समाज की सबसे सक्रिय और प्रभावशाली शक्ति होती है। इसीलिए सुरक्षित समाज के निर्माण में उनकी जिम्मेदारियां भी व्यापक हैं। सबसे पहले युवाओं को मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और मानवीय गरिमा के मूल्यों को समझना और अपनाना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके व्यवहार और विचारों में किसी भी प्रकार का भेदभाव, पूर्वाग्रह या असम्मान न हो। युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका जागरूकता फैलाने की है। साइबर जगत में भी युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना चाहिए, फर्जी खबरों से बचना चाहिए, ऑनलाइन उत्पीड़न या गलत गतिविधियों के विरुद्ध जागरूकता फैलानी चाहिए। सकारात्मक और तथ्यात्मक सामग्री साझा करके
वे स्वस्थ डिजिटल वातावरण के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। युवा स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेकर भी समाज की सुरक्षा और कल्याण में योगदान दे सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय से जुड़े अभियानों में सक्रिय भागीदारी उन्हें समाज से जोड़ती है और नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। इसके अतिरिक्त युवाओं को अपने आसपास होने वाली समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो तो उसे उचित

0: संस्थागत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज में संवाद, सहिष्णुता, परस्पर सम्मान की संस्कृति विकसित करना भी युवाओं का महत्वपूर्ण दायित्व है। सुरक्षित समाज के निर्माण में परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार बच्चों और युवाओं को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और संवेदनशीलता की शिक्षा देता है। जब युवा अपने परिवार से सम्मान, सहिष्णुता और समानता के संस्कार प्राप्त करते हैं, तब वे समाज में भी इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार शैक्षणिक संस्थान केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे जिम्मेदार नागरिक तैयार करने का कार्य भी करते हैं। विद्यालय और महाविद्यालय यदि चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दें, तो युवाओं में सकारात्मक नेतृत्व विकसित हो सकता है। स्वयं सेवा और सामुदायिक भागीदारी भी युवाओं के समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। तो दोस्तों, अंततः युवा अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जब वे ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देते हैं, तब वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसे युवा ही सुरक्षित, समावेशी, प्रगतिशील समाज की मजबूत नींव रखते हैं। जागरूक युवा केवल अपने भविष्य को नहीं संवारते, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षा, सम्मान और विकास की दिशा में बढ़ाने का कार्य करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूमिका और सबसे मूल्यवान योगदान होता है। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम केवल अपने सपनों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सुरक्षित भी हो और समृद्ध भी हो। उठो जवान देश की, वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। धन्यवाद।
1: युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उपरा से। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, आपने भी ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि कुछ लोग सिर्फ पद से बड़े बनते हैं, वहीं कुछ लोग अपने विचारों से भी महान बन जाते हैं। वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी का भी जीवन संघर्ष, मेहनत और जनसेवा का उदाहरण है। आपने मजदूरों के अधिकारों के लिए लगातार काम किया और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूती देने का भी प्रयास किया। उनका ये मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उसके मेहनत कश लोग होते हैं। उन्होंने श्रमिकों के हित को हमेशा प्राथमिकता दी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए। उनका जीवन युवाओं को यह सिखाता है कि नेतृत्व केवल बड़े पदों पर बैठने से नहीं आता। नेतृत्व लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए काम करने से आता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आइए मिलकर समझते हैं और एक बेहतर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दूर का रास्ता दिखाती है और हम घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखिए, मंजिल हमेशा बड़े बड़े कदमों से नहीं मिलती। कई बार छोटे छोटे कदम भी लंबा सफर तय कर जाते हैं। पेड़ भी एक दिन में छांव नहीं देता, उसे भी धूप सहनी पड़ती है, बारिश से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आज मेहनत का मौसम चल रहा है तो मुस्कुराइए, किसी मुश्किल में भी है तो भी मुस्कुराइए, क्योंकि आने वाला वक्त आपके सपनों की फसल लेकर आएगा। अपने इरादों को जिंदा रखिए, क्योंकि उम्मीद की रोशनी कभी अंधेरे से नहीं हारती। आज के सफर में यहीं तक। कार्यक्रम से अनुमति दें आशीष वर्मा को। सुनते रहिए, जुड़ते रहिए आकाशवाणी ओपरा से।

हम आकाशवाणी उमरा से बोल रहे हैं। एफएम 102.7 पर शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल संग।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: छुट्टियां अब हो गई पूरी, पढ़ाई की आई बारी। होमवर्क भी पूरा करना है, टीचर को दिखाना है। नई कक्षा में आगे बढ़ना, नई कक्षा में आगे बढ़ना, अच्छा बच्चा बन जाना है। इसी के साथ मैं आपकी बबीता दीदी सभी बच्चों का बाल संग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और बताइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गर्मी की छुट्टियां तो अब धीरे धीरे खत्म होने को हैं और स्कूल खुलने का समय पास आ रहा है। घबरा तो नहीं रहे हैं ना? कोई घबराने की बात नहीं है, स्कूल तो जाना ही है आप लोगों को। एक बहुत जरूरी बात याद रखने का समय आ गया है, वो बात है आप लोगों का होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क। इसीलिए कुछ बच्चों को देख रही हूं, चेहरे पर अलग सी कुछ हंसी खुशी है। कुछ बच्चे बहुत नर्वस हैं, बहुत उदास हैं। खुद समझ गए होंगे ना कि क्यों। हाँ, हंसी खुशी वाले बच्चों का होमवर्क और प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, वो इसलिए खुश हैं। नर्वस और जो उदास बच्चे हैं ना, उनका अभी कुछ बच गया है, होमवर्क और प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है।

0: क्योंकि आपने ये सोच लिया था अरे अभी तो छुट्टियां शुरू हुई हैं, एक महीना बचा हुआ है, कर लेंगे हम। जब थोड़ी सी बीत गई फिर सोचा अच्छा अभी तो 15 दिन है, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, यही सोचा था ना। यही कल करते करते स्कूल खुलने के दिन आ गए। यही बच्चे अब नर्वस हैं कि होमवर्क क्या दिखाएंगे, उदास हो रहे हैं कि कैसे स्कूल जाएंगे, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। चलिए बच्चों, अब वो समय तो आएगा नहीं जो बीत गया, जैसे मान लो वो 1 जून जब शुरू हुआ होगा छुट्टियां, या और पहले से शुरू हुई होंगी, वो तो अब आएगा नहीं। आज तो 24 तारीख आ गई, आपके पास अभी भी कुछ दिन है। क्या करिए, जो ये मौज मस्ती कर रहे हैं ना और खेल कूद कर रहे हैं, उसको एक साइड में कर दीजिए और उठा लीजिए कॉपी किताबें पेन पेंसिल। लेकिन जल्दी जल्दी में काम गलत नहीं करना है कि बस बैठे और चलो किसी तरह से हम पूरा कर दें उसको। अगर आप छुट्टियों में रोज थोड़ा थोड़ा समय भी पढ़ाई और ये होमवर्क को देते ना, तो आपको कभी भी बोझ महसूस नहीं होता। एक टाइम टेबल बना लेते और थोड़ी पढ़ाई करते, उसमें थोड़ा खेल भी लेते, आराम भी कर लेते, मौज मस्ती भी कर लेते, शाम को थोड़ा रिवीजन कर लेते। इससे आपका काम भी पूरा हो जाता, समय का सही यूज भी हो जाता और पूरा एंजॉय आप जैसे मैंने कहा वैसे भी हो जाता। खैर अब तो वो समय बीत गया, मैं फिर से देखिए उस बात को लेके बैठ गई, वो तो समय बीत गया। लेकिन आगे के लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों प्रोजेक्ट वर्क की। प्रोजेक्ट क्या है कि सिर्फ एक काम नहीं है कि बस मिला है और उसको हमें पूरा करके दिखा देना है, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत को दिखाने का मौका है कि आप देखें उसमें क्या दिखा सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क में दिक्कत हो रही है तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप घर में अपने बड़ों की राय ले लीजिए, टीचर की हेल्प ले लीजिए, किताबों से इंटरनेट से नई जानकारी जोड़िए, इससे प्रोजेक्ट बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप अपने प्रोजेक्ट को रंग बिरंगे चार्ट पेपर पर, अच्छी हैंडराइटिंग में, जैसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा जैसे लिख करके, अच्छे चित्र बनाइए, अच्छे मतलब डायग्राम बनाइए, या कहीं से कुछ कटिंग अच्छी मिल जाती है तो उसको वहां पेस्ट कर दीजिए, अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसको। ये नहीं कि बस खोला और जल्दी जल्दी से कॉपी चलाई पेंसिल चलाई और हो गया मेरा काम, ऐसे नहीं करना है, उसको अच्छे से बनाना है। बच्चों जब भी कुछ बनाए मेहनत और लगन से, तो बच्चों काम अपना पूरा कर लीजिए ताकि स्कूल खुलने पर मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को डांट पड़े, मार पड़े या क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उससे अच्छा ये है जो दिन बचे हैं आप उसमें अपना काम पूरा कर लीजिए। तो इन छुट्टियों में बच्चों ने देखें क्या नया सीखा, क्या क्या किया, ये सब सुनते हैं अब हम लोग बच्चों के मुख से, जिसका विषय है इस बार कि बच्चों की सीख और अनुभव भरी छुट्टियां, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ हैं, पार्थ सिंह, प्रिशा चौधरी, प्रज्ञा वर्मा, हिमाश्री चौधरी। इन बच्चों से बातचीत कर रही हैं रानी राजश्री और प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: आज कार्यक्रम के लिए हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं स्टूडियो में और हम इनसे जानेंगे कि गर्मी की छुट्टी का ये उपयोग कैसे करते हैं, कैसे अपने खास एक्टिविटी को सीखने के लिए समय निकालते हैं और पढ़ाई में कैसे इन छुट्टियों के माहौल में मन लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन।
2: मेरा नाम पार्थ सिंह है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और मैं बनारस का रहने वाला हूँ।
3: मेरा नाम प्रिशा चौधरी है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ।
4: मेरा नाम प्रज्ञा वर्मा है, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ, मैं ओबरा में रहता हूँ।
5: मेरा नाम हिमाश्री चौधरी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मैं वाराणसी में रहती हूँ।
1: तो चलिए सबसे पहले पार्थ, आप हमें बताएं कि जैसे कि स्कूल की पढ़ाई जब चल रही थी छुट्टियों के पहले, तो आप कैसे स्कूल जाते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या आपका शेड्यूल रहता था और घर पर आने के बाद होमवर्क जो मिलता था उसे कैसे कंप्लीट करते थे?
2: मैं स्कूल 7:45 AM पे

0: जाता था। उसके बाद मेरे स्कूल में 8 पीरियड्स होते थे, वहाँ के टीचर्स लोग अच्छे से पढ़ाते थे, उसके बाद होमवर्क देते थे, तो फिर सबसे पहले मैं खाना खाता था, उसके बाद होमवर्क करके थोड़ा ब्रेक लेता था, उसके बाद अपने एक्स्ट्रा स्टडीज करता था, जैसे कि रीडिंग करना हो गया, आगे के चैप्टर्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं।
1: कभी क्लास में कभी कुछ पूछने में, कुछ अगर सॉल्व नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम, तो पूछने में क्या डर लगता है या
0: नहीं? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मेरे टीचर्स तो वैसे बोलते हैं कि कोई डाउट हो तो आप फ्रीली बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हो तो पूछ लिए तो डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा वहाँ पे स्कूल में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और यही माहौल होना भी चाहिए ताकि आप इजिली अपनी बातों को कह सके, पूछ सके। तो चलिए प्रीशा, आपकी क्या टाइमिंग और आप कैसे मैनेज करती हैं अपने टाइम को?
2: मेरा स्कूल 10:30 सुबह स्टार्ट होता है। मेरे स्कूल में टोटल 8 पीरियड्स रहते हैं, जिसमें कि हर टीचर की क्लास 40 to 45 मिनट्स होती है। फिर उसके बाद मेरा स्कूल 4:30 PM पे एंड होता है, जिसके बाद मैं घर आती हूँ 5:30 तक, और फिर उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके होमवर्क करने बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर मैं ब्रेक लेती हूँ, मोबाइल में भी होमवर्क आते हैं तो उसको सॉल्व करके फिर उसके बाद मैं खाना खा के फिर पढ़ने के
1: मतलब अच्छा लगा सुनकर कि आप स्कूल से आने के बाद बड़े आराम से अपने होमवर्क को पहले कम्प्लीट करती हैं। तो इसके लिए आप खुद से करती हैं या मम्मी पापा को बोलना पड़ता है?
2: कभी कभार अगर मैं ज्यादा रेस्ट या मेरे को अगर ज्यादा रिलैक्स मतलब फील नहीं होता है तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो फिर मम्मी को उठाना पड़ता है।
1: चलिए बिल्कुल, पढ़ाई में मन यूं ही लगाते रहिए। और अब प्रज्ञा आप बताइए, आपका क्या शेड्यूल है?
3: मेरा स्कूल 7:30 में खुलता है। मेरे स्कूल में 8 पीरियड होते हैं।
1: इस 8 पीरियड में सबसे आपका जो फेवरेट क्लास है वो कौन सा है?
3: हिंदी।
1: हिंदी में कोई कविता याद है?
3: यस।
1: बताइए।
3: सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल, और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। अच्छा प्रज्ञा, आपको सुबह सुबह मम्मी उठाती है तो आप इजीली उठते हैं या फिर?
3: कभी कभी एक दो बार कर देता हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं।
1: चलिए अच्छी बात है। तो हिमाश्री आप बताइए कि आप किस प्रकार डेली स्कूल जाती हैं और कैसे अपना होमवर्क करने के लिए टाइम को मैनेज करती हैं आफ्टर स्कूल?
4: मेरा स्कूल 10:30 से स्टार्ट होता है, तो मैं सुबह 7:30 से 9:30 अपने स्कूल का वर्क करती हूँ या रिवीजन करती हूँ जो मैंने रात में पढ़ा होता है। फिर मैं स्कूल में सारे अटेंटिवली क्लासेस में सुनती हूँ, फिर घर आती हूँ तो होमवर्क करती हूँ, फिर थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा ही पढ़ती हूँ, फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर थोड़ा खेलती हूँ, क्योंकि मैं 5:30 से 6:30 खेलने जाती हूँ बास्केटबॉल। मैं स्केटिंग की नेशनल प्लेयर भी हूँ।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको हिमाश्री, बहुत अच्छी बात है। बच्चे आपको सुनेंगे और सीखेंगे कि वाकई वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या करती हैं आप?
4: स्विमिंग भी करती हूँ। सुबह 5:00 पे उठती हूँ, 5:30 तक रेडी होके 5:55 से 6:30 हमारा स्विमिंग चलता है हाफ एन आवर। मैं उसमें फ्री स्टाइल स्विमिंग करती हूँ जो मुझे थोड़ा थोड़ा 50% आ गया है। फिर मैं और भी उसमें
1: और भी एक्टिविटी आप सीख रही हैं, कर रही हैं। अच्छा हिमाश्री, ये जो स्विमिंग की बात आपने बताई, कितना समय आपको लगा सीखने में?
4: मुझे नियरली 2 वीक्स लग गए, मतलब 2 वीक्स अपने पूरे डर को हटाने के लिए मुझे 2 वीक्स लगे।
1: और डर के आगे जीत है ना। प्रज्ञा आप बताइए, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इस गर्मी की छुट्टी में?
3: मैं अपनी गर्मी की छुट्टी में रिविजन कर रहा हूँ और टेबल्स पढ़ रहा हूँ और खेल कूद भी कर रहा हूँ।
1: खेलते खेलते अपने सारे टेबल्स आपने याद करने का सोचा है ना?
3: यस।
1: गुड। अच्छा प्रीशा आप क्या कर रही हैं इस गर्मी की छुट्टी में?
2: मैं भी इस गर्मी की छुट्टी में स्विमिंग क्लासेस जा रही हूँ। रोज 5:30 से 6:30 AM तक मैं स्विमिंग करती हूँ, फिर उसके बाद घर आके थोड़ा रिविजन करके अगर मेरे को कुछ नया लर्न करना हो तो मैं उसको लर्न करती हूँ
1: मॉर्निंग टाइम में। गुड। और पार्थ आप?
0: जो मैं बेसिकली जैसे कि स्टोरी बुक्स होते हैं और ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज की बुक जैसे कि ओलंपियाड्स की बुक और साइंस की बुक वगैरह लगाता हूँ। और स्टोरी बुक्स इसलिए क्योंकि वो मेरे इंग्लिश की वोकैबुलरी को थोड़ा एनहांस करेगी
1: जी,
0: और साइंस की बुक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रखने के लिए। अभी तो मैं बायोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ। क्लास 12 की।
1: बिल्कुल, चलिए गर्मी की छुट्टी है, पढ़ाई के साथ आप लोगों का नए एक्टिविटी के साथ बीत रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आप स्कूल जाते हैं

0: तो अपने लंच में आप लोग क्या ले जाते हैं या क्या ले जाना चाहिए, ये दोनों बातें बताएं। पार्थ,
1: मेरी मम्मी जो है वो फ्रीक्वेंटली मुझे सब्जी रोटी वगैरह देती है, जैसे कि भिंडी की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी, ऐसे। और कभी कभी जब मैं बोलता हूँ कि जैसे टीचर्स डे हो गया, ऐसे कोई स्पेशल ओकेशन हो गया स्कूल में, तो मैं मैगी और ये भी ऐसे मम्मी से बोलता हूँ तो वो मुझे देती है। लेकिन जैसे ये नहीं कि मैं रोज रोज ऐसे ले जाता हूँ, स्कूल में तो ले जा सकते हैं लेकिन मैं उसको रोज ले जाने की कोशिश
0: प्रिफर नहीं करते। गुड,
1: वही मतलब जैसे कि वन मंथ में कभी एक बार या फिर वीक में।
0: पार्थ, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, फास्ट फूड खाना चाहिए और जो नॉर्मल जो सब्जी रोटी है वो खाना चाहिए, क्या बोलेंगे इसके बारे में?
1: वो ऐसा नहीं है कि फास्ट फूड एकदम छोड़ना है, आप खा सकते हैं लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि हर समय आपको खाना है। ये नहीं कि
0: बिल्कुल
1: जैसे घर में आपकी सब्जी रोटी आपको जैसे बने तो आप बोले नहीं ये नहीं खाना मुझे, ऐसा खाना, ऐसा नहीं है। आप वो भी खाइए, फिर आपको अगर खाने का मन हो कभी कभार, रोज नहीं, तो वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल, कभी कभी तो खाना ही चाहिए। और आप प्रिशा क्या ले जाती हैं लंच में और क्या खाना पसंद है आपको?
2: बेसिकली लंच में फ्रीक्वेंटली रोटी सब्जी ले जाती हूँ और एक एज अ साइड डिश एक फ्रूट या वेजिटेबल ले जाती हूँ। जैसे मेरे को कैरेट खाना बहुत पसंद है तो मेरी मम्मी कैरेट देती है लंच में, और मुझे ऑफकोर्स गाजर का हलवा बहुत ज्यादा खाना पसंद है।
0: अच्छी बात है, आप सैलेड के साथ जुड़ी है, नहीं तो आजकल के बच्चे ये खाना पसंद नहीं करते कभी कभी। प्रज्ञा, आप?
3: मैं अपने लंच में रोटी सब्जी ले जाता हूँ और मेरे स्कूल में दो लंच होते हैं।
0: अच्छा,
3: एक फ्रूट लंच और एक नॉर्मल लंच। फ्रूट लंच में मैं फ्रूट ले जाता हूँ और नॉर्मल लंच में मैं रोटी सब्जी ले जाता हूँ।
0: अच्छा प्रज्ञा, फ्रूट में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
3: ग्रेप्स।
0: ग्रेप्स तो हमेशा नहीं मिलते, फिर
3: ऑरेंज या तो एप्पल।
0: अच्छी बात है। हिमाश्री, आप क्या ले जाती हैं लंच में और आपको क्या पसंद है?
4: मैं यूजुअली तो रोटी सब्जी अपने लंच में ले जाती हूँ। मुझे फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है तो बहुत कम मम्मा मेरे को मतलब पूरे लंच में फ्रूट्स देती हैं।
0: मैक्सिमम वो फ्रूट्स ही आपको देती हैं और रोटी सब्जी जो घर की बनी हो। ठीक है, अच्छी बात है। इन चारों बच्चों ने बहुत अच्छा बताया कि लंच में ये फास्ट फूड की तरफ जो बच्चे भाग रहे हैं वो ना भागे, बाकी रोटी सब्जी सैलेड फ्रूट ये सब आप सभी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, साइकिल आप सभी चलाते हैं?
3: हाँ।
0: ओके, अभी जैसे कि गर्मी छुट्टी आप सभी बच्चों की हो चुकी है तो होमवर्क तो बहुत सारे मिले होंगे, तो इसको करने के लिए सारा दिन तो आपके पास खाली है, तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं होमवर्क करने के लिए, बाकी के एक्टिविटी के लिए और खान पान जो आप करते चल रहे हैं या खेल कूद है, सब कुछ, ये सब कुछ एक टाइम मैनेज कैसे करते हैं?
1: मैं सुबह उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं 1 आवर या फिर 1 आवर 30 मिनट्स के लिए मैं अपना होमवर्क करता हूँ। उसके बाद फिर मैं दोपहर में अगर मुझे थोड़ा स्ट्रेस की मतलब रिलैक्स करना है तो मैं 1 या 2 आवर थोड़ा स्लीप करता हूँ। उसके बाद उठता हूँ तो मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत अपना होमवर्क कर लेता हूँ। इवनिंग का समय तो फिर मैं सबसे पहले इवनिंग का थोड़ा स्नैक्स लेता हूँ लाइक हाईलाइट लाइक बिस्किट्स, फिर उसके बाद मैं अपना स्टडीज करता हूँ लाइक 1 आवर वर्ल्ड होमवर्क करता हूँ ये ऐसे, फिर उसके बाद मैं खा के सो जाता हूँ, ऐसे ही मेरा शेड्यूल है।
0: बहुत बढ़िया। प्रिशा, आपका क्या शेड्यूल रहता है इस गर्मी की छुट्टी में, किसी एक दिन का शेड्यूल?
2: पहले तो मैं सुबह उठती हूँ तो मैं रेडी होती हूँ, मैं स्विमिंग क्लासेस जाती हूँ, फिर वहाँ से मैं 7:30 तक आती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं 8:00 से 10:00 तक पढ़ती हूँ, थोड़ा रिविजन करती हूँ, फिर उसके बाद मेरे को अगर नींद आ रही है तो मैं उसमें 1 to 2 hours सो जाती हूँ।
0: तो जैसे आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई करती हैं तो शाम में भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल रहता है?
2: हाँ, मैं शाम में जैसे 5 to 8:30 PM तक एक स्लॉट है
0: okay.
2: पढ़ने का, और फिर नाइट में 9 to 11 PM तक मैं हॉलीडे होमवर्क या तो मैं पढ़ती रहती हूँ मतलब रिविजन के लिए।
0: गुड। और प्रज्ञा, आप?
3: मुझे गर्मियों की छुट्टी में ज्यादा होमवर्क मिला है, उसमें से मेरे मैथ्स और हिंदी के होमवर्क कंप्लीट हो गए हैं, और मैं होमवर्क शाम करता हूँ और सुबह करता हूँ।
0: अच्छा, मम्मा कराती हैं?
3: खुद से करता हूँ।
0: अच्छा प्रज्ञा, पढ़ाई के लिए मम्मा से डांट पड़ती है क्या या खुद से बैठते हैं पढ़ने के लिए मन लगा के?
3: कभी कभार,
0: कभी कभार डांट पड़ती है ना। बिल्कुल जरूरी है, थोड़ी बहुत डांट पड़ती रहनी चाहिए। और हिमाश्री, आप कैसे अपना होमवर्क कितना कंप्लीट कर लिया?
4: जैसे मैंने बताया, मैं स्विमिंग सुबह जाती हूँ, फिर मैं वहाँ से आती हूँ तो मैं भी 8:00 से 9:30 तक अपना रिवीजन करती हूँ और एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ती हूँ, फिर मोबाइल पे जो वीडियोज होते हैं

0: सब्जेक्ट्स में, मतलब जो मैं पढ़ रही थी नहीं समझ आया तो वो देखती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा गेम खेल लेती हूँ, फिर
1: थोड़ा गेम खेलती हैं या ज्यादा?
0: थोड़ा
1: ओके,
0: खेलती
1: एडिक्शन नहीं होना चाहिए. ओके.
0: दोपहर में अपना हॉलिडे होमवर्क करती हूँ, शाम तक जैसे मैं 5 से 7:30 दोबारा एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ, जैसे
1: हाँ.
0: मैं हार्ड सब्जेक्ट शाम में पढ़ती हूँ जैसे मैथ्स
1: ओके,
0: वगैरह साइंस, फिर मैं थोड़ा सा रात में रिविजन करके सो जाती हूँ।
1: गुड. अपने समय को पढ़ाई के साथ भी आप अच्छे से स्पेंड कर रही हैं. अच्छा, अभी जो एक समस्या आ रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा, या स्कूल में बताया जाता है या घर में आप सीखते हैं कि हमें जल बचाना चाहिए, ठीक है, तो वाटर सेव करना चाहिए. तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी, आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
0: मेरे टीचर्स कहते हैं कि जैसे स्कूल्स में जो टैप होते हैं वो भी खुले रहते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं वो टैप खुला छोड़ के चले जाते हैं, तो हम लोग उसको बंद कर दिया करें, तो मैंने देखा भी है तो मैं बंद कर देती हूँ, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं घर पे भी ऐसे करती हूँ, टैप बंद करती हूँ।
1: अच्छा पार्थ, आप कैसे पानी बचाते हैं, क्या प्रयास करते हैं?
2: मेरे स्कूल में जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे शैतानी करते, तो वो जैसे बॉटल में अब सारा पानी पी गए तो फिल्टर से भरते हैं पानी, फिर उसके बाद जब घर जाने लगते हैं तो वो लोग ऐसे वे वो पानी को गिरा देते हैं. ऐसा प्रिवेंट करने के लिए हम लोग के प्रिंसिपल ने एक अलग से टब इंस्टॉल किया हम लोग के वाटर फिल्टर के
1: ओके.
2: पास, जैसे कि अगर पानी आपको नहीं पीना है तो उसमें आप डाल सकते हैं और उसके बाद फिर वो प्लांट्स में वाटर करने के लिए यूज हो सकता है.
1: ग्रेट.
2: कभी कभार अगर जैसे हो जाता है लेकिन तब भी मैं उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे अगर घर में भी अगर कोई टैप लीक हो रहा हो तो हम लोग बुलाते हैं जल्दी से उसको ठीक कराने के लिए, जल्दी से फिक्स हो जाए वो.
1: बिल्कुल, पानी बचाना चाहिए. प्रिशा, आप कैसे, जल संरक्षण करना चाहिए हमें, पानी बचाना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगी, क्या प्रयास होते हैं आपके?
3: मैं पानी सेव करने के लिए, जल संरक्षण के लिए पहले तो मतलब स्कूल में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि अगर मेरे को पानी की जरूरत हो तभी मैं वाटर फिल्टर या वाटर कूलर से जाके पानी भरूँ, नहीं तो अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो उसको मतलब वेस्ट ना करूँ ज्यादा। फिर उसके बाद अगर जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमारे स्कूल ने हमें बोला है कि आप अपने घर के बाहर जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनके लिए आप थोड़ा पानी रखें जिससे कि
1: बिल्कुल
3: वो भी हाइड्रेटेड रहे, वो भी मतलब मरे ना और वो भी जिंदा रहे,
1: बिल्कुल
3: तो हमारे स्कूल ने ये स्टेप लिया है तो हम भी उसको फॉलो करते हैं।
1: बिल्कुल. और स्कूल के माध्यम से ये शिक्षा दी जा रही है कि जो आश्रित पशु पक्षी हैं उनके लिए आप जल रखें, तो बहुत अच्छा प्रयास है और आप बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा. प्रज्ञी, आप कैसे जल बचाते हैं, कैसे वाटर सेव करते हैं?
4: मैं जब स्कूल जाता हूँ अपने वाटर में पानी लेकर जाता हूँ, तो जब पानी बच जाता है तो मैं उसको रोड पे नहीं गिराता हूँ, उसको मैं पौधे में डाल देता हूँ.
1: ओके. चलिए, इन बच्चों के माध्यम से वाकई हमें पता चल रहा है कि बच्चे कितने जागरूक हैं, चाहे स्कूल के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जा रही हो, चाहे परिवार के बड़े लोग उन्हें सिखा रहे हों. लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चे सीख रहे हैं, उसे कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू इतनी अच्छी बातचीत के लिए. आपको सभी श्रोता, सभी बच्चे सुनेंगे, सीखेंगे कि कैसे जल संरक्षण के साथ साथ गर्मी की छुट्टी में समय का कैसे यूटिलाइज करना और खान पान में क्या कुछ हम शामिल करते हैं. आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद.
5: बच्चों की सीख और अनुभव भरी छुट्टियां, इस पर बच्चे अपने अपने अनुभव और नई नई सीख बता रहे थे. जल संरक्षण का भी बताया, लंच में क्या क्या ले जाते हैं ये सब भी बताया. बहुत अच्छा लगा इन लोगों की बातचीत सुनकर के. और जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ थे ना, उनके नाम थे पार्थ सिंह, प्रिशा चौधरी, प्रज्ञा वर्मा, हिमाश्री चौधरी. और इन सब बच्चों से बातचीत कर रही थी रानी राजश्री और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा.
6: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात.
7: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ.
8: हेलो,
6: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
7: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
6: डायल करिए 0544529710. मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से.
7: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
6: ओनली ऑन AIR ओबरा.
5: एक बार फिर से सभी बच्चों का बाल संग कार्यक्रम में स्वागत है और मैं आपकी बबीता दीदी. बच्चों अब हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत के इतिहास में जिनका नाम बड़े सम्मान से

शिक्षक भी थे तो बहुत विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी और उन्हें इस कला के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। उनके लिए संगीत केवल कला नहीं बल्कि एक साधना थी। बच्चों, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की चाहत है, कुछ करने की लगन है, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी की जयंती पर उनके योगदान को याद करिए और संकल्प लीजिए कि अगर आप भी पूरी लगन और ईमानदारी से अब आप आगे के लिए काम करेंगे। तो बातचीत को अब थोड़ी देर रोक देते हैं और सुन लेते हैं मिल करके ये प्यारा सा गीत।

0: बच्चों, अभी आप लोग ने गीत सुना और अब बाल संघ कार्यक्रम समाप्त करने का समय तो हो रहा है, लेकिन चलते चलते यही कहेंगे, सफाई का ध्यान रखना है। कूड़ा कचरा इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना है। और अब तो अलग अलग भी हैं, हरा और नीला, तो वैसे ही डालना है अलग अलग। स्कूल और हो चाहे घर हो, सब जगह सफाई का ध्यान रखना है। उम्मीद है मेरी बात अब आप लोग याद रखेंगे। तो इसी के साथ बबीता दीदी को दीजिए विदा। बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल संघ। आकाशवाणी के हम उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में अग्रणी वैश्विक कंपनियन आ निवेशकन के साथ बातचीत कई लें। इस दौरान वहां के उत्तर प्रदेश के निवेश अनुकूल नीति, मजबूत कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और विकास के संभावना के बारे में जिक्र कई लें। मुख्यमंत्री कहले कि नवाचार, प्रौद्योगिकी आ सुशासन आधारित विकास मॉडल के साथ नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकन बड़े भरोसा आ विकास के पसंदीदा जगह ही बन के उभरल हवे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग लगी के घटना के देखत प्रदेश सरकार राज्य के कोचिंग संस्थानन के नियमन के मजबूत कैले आ अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ अभियान के शुरुआत कैले हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि पूरा राज्य में आग से बचाव के उपायन के जांच मिशन मोड में कैल जाए। श्री योगी प्रदेश के सज्जो जिलन में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करौले के निर्देश दिले हवे। एक रिपोर्ट।
1: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास सुरक्षा के स्थिति में सुधार के देखत भारतीय नागरिकन बदे संशोधित सलाह जारी कैले ह। एगो रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101।

0: 9115, दूसरा नंबर है +989128109109, तीसरा नंबर +989128109102, और चौथा नंबर है +9899321793। इसके अलावा भारतीय नागरिक CONS.Tehran@MEA.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: UPTET 2026 के परीक्षा अगला महीना 2 से 4 जुलाई के बीच हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार बतौले कि परीक्षा प्रदेश के 60 जिलन के 955 केंद्रन पर आयोजित कर जाए। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड कर जा सकेला। केंद्र सरकार कहले हवे कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बा आयकर लगातारे निगरानी कल जा रहल ह। निगरानी में तेल कंपनियन, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियन आ औरियो पक्ष शामिल ह। सरकार साफ कहले ह कि सोशल मीडिया पर चल रहल खबर भ्रामक आ निराधार बा। E20 पेट्रोल के शुरुआत के बादे से इथेनॉल मिलौले के नाते इंजन में खराबी चाहे गाड़ियन में तकनीकी खराबी के कौनो शिकायत सामने नहीं आई बा। आज पासपोर्ट सेवा दिवस हवे। ई दिन 24 जून 1967 के पासपोर्ट अधिनियम लागू भइले के उपलक्ष्य में मनावल जाला। ए मौका पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कहले हवे कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरका फेरा के क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नया पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रन आ पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रन के स्थापना आ रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी कैले से जतरा सुगम हो रहल ह। हज 2027 बदे ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया शुरू हो गई ह। हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट आ हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई ले पंजीकरण करावल जा सकेला। जुलाई के आखिरी हफ्ता में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के जरिया से चयनित यात्रियन के सूची जारी कैल जाए। मौसम विभाग आवे वाला 3 दिन ले प्रदेश के पूर्वी इलाकन में भीषण गर्मी के दौर जारी रहले के अनुमान जतौले है। हालांकि आज दोपहरिया बाद गोरखपुर में भइल बरखा से लोगन के भीषण गर्मी से राहत मिलल है। विभाग के मुताबिक 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरखा के एगो नया दौर शुरू होगी। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: आपो के राम राम नंद भैया। पंचायती के भैया देखा डुगडुगी बजल, और डुगडुगी बजल भैया तो आपसी बातचीत के माध्यम से बहुत सारा जानकारी सुने और समझे के मिला भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल मुरा हो भैया। और देखें जब डुगडुगी आप बजवौलें तो ओकर एक भैया संदेश खुदे चल जाला कि भैया आज अपने जोन बा पंचायती में का हुई। आ कहीं न कहीं रोज न रोज कुछ न कुछ भैया एक नया मुद्दा पर और नया बात सुने के भी मिलला। और देखें आज शामिल भी बा कि देखें अपन देश जरूर आजाद बा मुराहो भैया,
1: हाँ भैया,
0: लेकिन मुराहो भैया अपने समाज में अभी कुछ ऐसन कुरूतियों के मान कहला या ऐसा रीति रिवाज मान ला
1: बिल्कुल
0: जैसे कि आज भी लोग ग्रसित होके और जोन विकास के कड़ी बा उसे पीछे रह जाते हो। कड़ी में भैया विकास के जोन आगे चले के प्रक्रिया बा ओमें शामिल ना हो पावत हो।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: कहीं न कहीं आज भी अपने समाज की जरूरत बा। देखा मुराओ भैया जैसे तू अपन जागल हवा
1: हाँ भैया,
0: भैया, देखा एगो तोहार भी फर्ज बा कि भैया अपने आस पास समाज गांव गिरा जहाँ तक तो से संभव बा भैया प्रयास करे के चाहिए। काहे से कि देखा कहल जाला ना कि नशा या कौनो भी ऐसा प्रथा बा जोन वो कुप्रथा

0: या भैया ओकर छोड़े में बहुत कठिनाई होला,
1: एकदम
0: पकड़े
1: भैया
0: में तो बड़ा आसान होला,
1: बिल्कुल
0: लेकिन भैया जब ओके छोड़े के बात आवला तब तो भैया कहल जाला ना कि भैया करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान रस रिया, उ तरह के आदमी समझे लगला कि भैया अब तो हम अब नशा के बात करला।
1: हाँ भैया
0: अब देखा जब भैया हम भैया गुटका फुला लिए मुंह में, अब भैया उनसे कहबा तो कहिए कि भैया अब तो ये छूटते ना बा,
1: एकदम एकदम
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया ओकर उस स्वाद के और उसे उग्रसित हो गई हुआ, तो कहीं ना कहीं भैया उनके बार बार अगर पिंच करल जाए, बार बार कहल जाए कि भैया देखा ही खराब बा, एके थूक द, एके भैया मत खा, अब जब मिले तबे कहें, जब मिले तबे कहें,
1: बिल्कुल
0: तो भैया उनके दिमाग में भी आ जाए कि वो देखा एकदम तो बिल्कुल खराब बात बा, एकदम तो पैसा भी नुकसान करा, लोगन के बात भी सहा, तो वो अंत समय में भैया वो छोड़िए दी है।
1: एकदम सही कहा हुआ नंदो भैया। और निश्चित रूप से भैया देखा जब विकास के बात आवेला तो जागरूकता बहुत ही जोन बा के महत्वपूर्ण कड़ी हुए। और निश्चित रूप से भैया देखा आज़ादी के लगभग 78 साल बीत गए और इसने में आज भी जब हम लोगों के सामाजिक कुरीतियाँ देखे के और सुने के मिलला तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से पिछड़ापन महसूस हो गला। और आज समाज में तमाम तरह के कुरीतियाँ हुए जैसे दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, जातिवाद हो गया, छुआछूत हो गई, लैंगिक असमानता हो गई, कन्या भ्रूण हत्या, अंधविश्वास, नशाखोरी, बाल श्रम, ये प्रकार के कई भी देख सामाजिक कुरीतियाँ हुए जेकरा वजह से भी देख हम लोगन के आसपास अपने राज्य अपने देश में भी जोन बाकी जैसन कि आप कहला कि विकास में बाधा पड़त हुए तो निश्चित रूप से भी देख जहाँ भी सामाजिक कुरीतियाँ हुए हम लोगन के आसपास हुए या अपने क्षेत्र में हुए तो हम लोगों के दूर करे के प्रयास करे के चाहिए। दूर करे के प्रयास में भी देखा हम लोगों के जोन भी अपने देश के कानून बा वो सरकार द्वारा बहुत सारा कानून भी बनावल गए हुए कि अगर सामाजिक कुरीतियाँ भी देखा जोन देखल जाते हुए या सुनल जाते हुए तो पहले तो भैया देखा ओके अपने से ही समझावे के चाहिए और वो उनके समझा बुझा करके भैया देखा सामाजिक कुरीतियाँ से दूर करे के चाहिए। अगर वो ना मानत हुआ तो निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगों के जोन भी संबंधित अधिकारी हुए उनके सूचित करे के चाहिए और उनके भी देखा सजा दिलवावे के जोन प्रावधान बा ओके भी देखा जरूर पालन करे के चाहिए। और
0: बिल्कुल
1: ओकरे साथ साथ भी देखा जागरूकता हुए और जागरूकता जब भी देखा अपने आप में रही तभी जाके भी देखा जोन बाकी ये तरह के जोन सामाजिक कुरीतियां हुए ओके से दूर भइल जा सकेला। और एकरा में शिक्षा सबसे बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हुए जोन भी लोग शिक्षित हुए जोन भी गाँव समाज शिक्षित हुए वहाँ आज भी जोन बाकी सामाजिक कुरीतियां बिल्कुल नहीं हुए। और निश्चित रूप से भी है देखा जब हम लोगों के शिक्षा के बात आवला शिक्षा ही ऐसन हथियार हुए जेकरा से हर तरह के जोन खामियां बा ओके दूर कर जा सकेला। और ओकरे साथ साथ भी है देखा महिला हो महिला सशक्तिकरण के बात आवला सामाजिक कुरीतियां के भी है देखा एक कड़ी कहला कि महिला अगर सशक्त हो जाइए जागरूक हो जाइए और उनके आर्थिक रूप से कहला सामाजिक रूप से कहला शैक्षिक रूप से कहला यह देखा जब उनके अंदर जागरूकता आई तो कहल जाला कि भैया देखा महिला जोन बाकी हम लोगों के घर परिवार के एक जोन बाकी कड़ी हुगन और साथ चले वाला कंधा से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चले वाला हुआ तो जब वो जागरूक हो जाइए तो निश्चित रूप से भी देखा सामाजिक कुरीतियां अपने आप दूर होके लगी भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल देखा मुराहू भैया जितना तू गिनैला भैया गिनावे में तो बड़ा आसान लगल मुराहू भैया
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जौने घर में जौने समाज में चाहे दहेज प्रथा के बात कैल चाहे बाल विवाह के बात कैल चाहे बाल श्रम के बात कैल
1: बिल्कुल
0: राहु भैया जब ई जोन बा प्रथा के चपेट में आ जाले तब तो भैया कुछ ही दिन ना उनकर पूरा के पूरा एक जीवन जोन बा अब देख जिसे बाल विवाह के बात करला तो बाल विवाह भैया कहे बड़ा छोट बा या लोग समझे ले कि हमार देखे जिम्मेदारी बा कि भैया बिटिया अगर कुछ हो गई बड़ा तो भैया ओके जल्दी से शादी ब्याह कर दा, लेकिन भैया वो बिटिया के भी एक स्वतंत्र और जोन बा भैया एक स्वस्थ जीवन जिए के जोन अधिकार बा भैया बाल विवाह से देखा बिल्कुल ओकर जीवन जोन बा चौपट हो जाला।

0: स्वस्थ रह पाई, और ना ही जौन बा वो मतलब एक अच्छा मतलब नागरिक बन के या समाज के जौन कहला कि अभी महिला या पुरुष जौन बा कड़ी से कड़ी या कंधा से कंधा मिला करके आगे चलत हो, तो भैया वो कोसों दूर बिटिया हो जाई कड़ी से। काहे
1: बिल्कुल
0: से कि देखे कहा जाला ना कि 100 रोगन के एक दवाई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो
1: बिल्कुल
0: भैया जब पढ़ाइए न रही, जब शरीरे न रही, भैया जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्ती होला, तो
1: हाँ
0: भैया
1: भैया
0: ओकर जीवन मतलब एकदम बेकार हो जाए। अब कहे के तो बहुत छोट बात बा, लेकिन भैया केकरो के बिटिया जब ऐसे अपन गहिस हो जाला दहेज के साथ, दहेज उत्पीड़न में कई कई बिटिया जब अपन जिंदा जौन भी अपने जीवन के मतलब समाप्त कर ले वाली लीला के, अब ऊ समझ ल कितना बड़ा वेदना बा। तो हम तो इहे कहब मुराहू भैया
1: हाँ
0: कि
1: भैया
0: भैया इतना घातक जौन जौन भी अपन इस समाज में कुरुति बा, भैया सब छोड़ल जाए। दहेज के मतलब भी ना बा भैया कि हमरे पास ही केवल बेटा बा बिटिया ना बा, आपके
1: बिल्कुल
0: भी बिटिया बा, अब बिटिया के भी बिटिया, मतलब कहे के मतलब कि एक तरह से ये लेन देन बा।
1: एकदम
0: अगर
1: एकदम
0: आप देवत हुआ तो आप लेवत हुआ, आप लेवत हुआ तो आप देवत हुआ। तो भैया कहे के मतलब ई बा कि ई जो लेन देन के प्रथा में बीच में जो बिटिया लोग अपन भैया उनके, अब जैसे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कहला, तो कहीं न कहीं ई दहेज के ही एक देन बा कि
1: बिल्कुल
0: भैया
1: बिल्कुल
0: आज ई कन्या भ्रूण हत्या होत बा, अगर दहेज बंद कर दिया जाए तो भैया उनके भी समाज में आवे के इजाजत रही, और उनकर भी समाज में पूरा पूरा अधिकार रही है, माई बाप होके बोझ न समझी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हुआ नंदू भैया। और इसने भैया देखा आज भेंट वार्ता क्रम में हो, जन जागरूकता से ही बाल विवाह रोकना संभव। एकरे बारे में महेशानंद भाई जी जो उनके सामाजिक कार्यकर्ता हुअन अपन अचलू भैया बातचीत कैले हुअन ओके सुनल जाए। और ओकरे साथ साथ भैया देखा हम लोगन के बुल्लू यादव उनकर संगतिया भैया मन फेर भी करे हैं, और इंद्रासन भैया बाजार भाव भी भेजले हुए ओके भी बाचल जाए। और एक और भेंट वार्ता क्रम में मोटे अनाज सावा की खेती के लिए खेत की विशेष तैयारी, एकरे बारे में द्वारिका सिंह खरवार जो उनकी प्रगतिशील आदिवासी कृषक हुअन अपन भोला भैया बातचीत करी हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से कल जब भैया।
0: भैया सुनल जाइए, और एक भैया खेत बचाओ अभियान भी बा, ओकर भी जानकारी अपन किसान भैया लोग अपन ली हैं। तो हम तो कहब कि जब इतना बढ़िया बात जानकारी तावत जन जागरूकता से ही बाल विवाह रोकना संभव बा। ये जोन महेशानंद भाई जी हों सामाजिक कार्यकर्ता, अचलू भैया का बात करत हुआ, हम कहब कि आवाज सुनल जाइए।
1: एकदम सुनल जाए भैया।
2: श्रोताओं, भारतीय समाज में पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं चली आ रही थीं जो समय के साथ सामाजिक कुरीतियों का रूप लेती गईं। अंधविश्वास, अशिक्षा और सामाजिक दबाव के कारण कई प्रथाएं समाज के विकास में बाधा बन गईं। इन्हीं कुरीतियों में से एक है बाल विवाह प्रथा, जिसे आज भी कई स्थानों पर देखा जा सकता है। कम उम्र में बच्चों का विवाह उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। आज हमारे बीच आकाशवाणी स्टूडियो में जमीन से जुड़े एवं कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, उपराष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ग्राम स्वराज समिति के सचिव श्रीमान महेशानंद भाई जी उपस्थित हैं, जो इसी प्रकार की कुप्रथाओं के कारण होने वाले दुष्परिणामों से समाज को जागरूक कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ऐसे कार्यों में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पुराने समय में सुरक्षा की चिंता, सामाजिक दबाव, अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण बाल विवाह की प्रथा शुरू तो हुई, लेकिन अभी भी आप जब अभी समाज के उस तबके से मिलते हैं जो इस बाल विवाह प्रथा को सही मानते हैं, तो इसके पीछे उनका तर्क क्या रहता है? जब आप उनसे बात करते हैं तो क्या तर्क देते हैं वो?
3: दरअसल बाल विवाह तो कानूनी रूप से सरकार से लेकर सारे लोग इस बात को मान लिए कि ये अपराध है,
1: जी जी
3: बाल विवाह अपराध है, ऐसा मानते हैं। अपराध है ये बात कहने से जब तक कानून को इमली जरा नहीं पहनाएंगे
1: जी जी
3: तो बात बनेगी नहीं।
1: जी
3: कानून अलग है, गांव अलग है, बेटी अलग है, उनका फ्रीक्वेंसी अलग है,
1: जी
3: अब उसमें सबको सेट करना समाज का काम है।
1: जी
3: अब गांव में बाय द वे किसी एक आदमी की लड़की कम उम्र में पढ़ते समय लिखते समय मोबाइल के सहयोग से किसी आदमी के साथ भाग जाए तो वो 10 गांव में ये सूचना जाएगा कि लड़कियों का पहले विवाह न करें तो भाग जाएगी
2: जी,
3: पहले विवाह न करेंगे तो पढ़ेगी नहीं, या पहले विवाह नहीं करेंगे तो हमारी पगड़ी जो है गिर जाएगी।

0: पहले विवाह नहीं करेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। ये एक लड़की अगर इस तरह का काम कर दी तो आप समझ लीजिए कि पूरे समाज, पूरा तालाब गंदा हो जाएगा एक मछली की वजह से। यह चलन चल रहा है
1: जी।
0: और आज मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया काम कर रही है। ये जो मोबाइल का जमाना चल गया है, ये जितना समाज में गुरु लोग कान नहीं फूक रहे हैं उससे ज्यादा ये मोबाइल कान फूक दे रही है लोगों का।
1: जी, जी, जी।
0: और लोग जो है उसको सही मानकर चल रहे हैं। आप समझ लीजिए, जब कभी एक बार हम माननीय राजनाथ सिंह से बात कर रहे थे, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, तो वो कह रहे थे भाई अब क्या करेंगे, उस जमाने में तो हम लोगों की शादी भी बाल विवाह के रूप में हो गया था। लेकिन वह चीज आज हम उसको पकड़ कर बैठे अपने बच्चों का भी बाल विवाह करें तो यह तो उचित नहीं,
1: उचित
0: है।
1: नहीं है।
0: तो बाल विवाह को रोकना है और रोकने के लिए कोई पुलिस, कोई विभाग ये काम नहीं करेगा
1: जी, जब तक सामाजिक
0: जागरूकता
1: नहीं आएगी।
0: जब तक गांव का सामाजिक ताना बाना, गांव समाज और ग्राम पंचायत इस काम को अपने और काम के तरह अपना काम नहीं मानेगी तो बाल विवाह होता रहेगा।
1: जी जी जी। तो सर देखिए, कहा जाता है कि अगर जल्दी विवाह करने से परिवार की जिम्मेदारी जल्दी पूरी हो जाएगी, तो इसमें समस्या कहाँ है आगे की?
0: विवाह से समस्या जल्दी पूरी नहीं होती है, जल्दी विवाह से समस्या चार गुना बढ़ जाती है।
1: यह अभिशाप
0: जो
1: आखिर कैसे है?
0: जो बच्ची कच्चे घड़े की तरह है, उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से बाल विवाह प्रेरित करता है
1: जी।
0: और कभी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कभी उसका मन अपने कामों में नहीं लगेगा, उसका काम पढ़ने में नहीं लगेगा
1: जी, जी।
0: और रोग के चपेट में वो निरंतर रहेगी
1: जी।
0: और ऐसे ऐसे गुप्त रोगों के चपेट में रहेगी कि वह अपने माता पिता से या अपने पालकों से खुलकर नहीं करती है
1: जी, जी,
0: और धीरे धीरे दम घुटता रहता है। बाद में पता चलता है तो खेला खत्म हो गया होता है
1: जी।
0: तो बाल विवाह के लिए जन जन को जागना होगा
1: जी।
0: जन जन जाग करके बाल विवाह के लिए केवल तैयार हो जाएगा, केवल तैयार होएगा, नहीं बाल विवाह नहीं होगा
1: जी।
0: जितने प्रधान है ड्रम बजवा कर कोटवार

0: लेकिन ये बात को उनके तक नहीं जा रहा है
1: जी जी,
0: और इस बात को लोग उस तरीके से नहीं कह रहे हैं।
1: जी,
0: केवल कुछ सामाजिक संस्थाएं और कुछ कुछ सरकार के लोग मिल करके बाल विवाह के रोकने में लगे हुए हैं। आप समझ लीजिए 10-9-8 नंबर हेल्पलाइन जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, अगर इस नंबर पर कोई आदमी XYZ किसी लड़की के विवाह होने का सूचना दे,

0: पादरी
1: हम्म,
0: ये जेल में जाएंगे,
1: जी
0: खाना बनाने वाला जेल में जाएगा,
1: हम्म,
0: और खाना बनाने वाला ने टेंट तम्बू वाला भी जेल में जाएगा,
1: हम्म,
0: बाजा बजाने वाला टेंट में जाएगा, किसी तरह का सहयोग करने वाला हर व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है,
1: जी जी
0: एकदम निश्चित है।
1: जी अगर मान
0: लेकिन
1: लीजिए
0: अगले
1: कि
0: आदमी को पता नहीं है
1: लेकिन अगर
0: कि
1: यही
0: हम
1: चीज पूछना था सर कि अगर मान लीजिए कि हम ही है, मुझे नहीं पता कि बाल विवाह हो रहा है, शादी में सम्मिलित होने के बाद पता चलता है कि यह तो बाल विवाह है, तो हम लोग उसे कैसे रोक सकते हैं?
0: तुरंत आप इस नंबर पर बात करिए ना भाई,
1: 1098 पे।
0: 1098 पर, याद रखने के लिए 1098 कहेंगे तो याद रहेगा ये
1: तो क्या
0: नंबर।
1: ये जो सूचना देगा
0: हाँ
1: उसकी
0: उसको
1: जानकारी गुप्त रहेगी फिर?
0: उसकी 101% गुप्त रहेगी, यह किसी से नहीं बताया जाएगा और कार्रवाई तुरंत होगी।
1: अच्छा,
0: बस उस जो फोन करेगा वो लोकेशन बता देगा, नाम बता देगा, दूर खड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई कहीं से उसका स्पष्टीकरण नहीं किया जाएगा कि फला आदमी सूचना दिया तो हम आ गए हैं, अब
1: जी
0: गांव भर का आदमी उसका बाल चोथने लगे कल जा
1: जी
0: करके, तो
1: जी
0: ये नहीं चलेगा।
1: जी
0: वो विभाग के हों चाहे हम लोग हों,
1: हम्म,
0: कभी भी इस तरह का काम नहीं करते
1: नहीं
0: हैं।
1: करते हैं।
0: दूसरी बात यह है कि अभी 100 दिन हम बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त सोनभद्र, बाल विवाह मुक्त चंदौली के लिए रथ निकाले, रथ यहाँ से होते हुए गई, आप लोग जानते हैं,
1: जी
0: उससे तमाम नंबर, किससे किससे कांटेक्ट करना है, कितने बाल विवाह रोके गए हैं, कितने बाल विवाह रोकने से कौन सी ऐसी लड़की है जो कल हाई स्कूल में थी आज पता चला कि वो BSc कर ली है, यह सक्सेस स्टोरी भी हम लोगों को बताने का काम किए उस लड़की के माध्यम से कि हमारा बाल विवाह रुक गया 3 साल पहले तो आज हम BSc में चले गए,
1: चलेगा, कुछ अपनी
0: और
1: शिक्षा
0: हमारे
1: पूरी
0: मन में है कि
1: कर
0: हम
1: ले।
0: टीचर बनेंगे, हम BEd करेंगे।
1: जी
0: तो जो इसका उत्साह बड़ा वर्जन है ये सुन करके दूसरे लड़की और उनके माता पिता
1: प्रेरित
0: प्रेरित
1: होते हैं।
0: होंगे,
1: जी
0: बाल विवाह में इससे रोक
1: जी जी
0: लगेगा। एक
1: तो
0: तो
1: जो इस रथ के माध्यम से जो आपने अपना अभियान जो चलाया सर, सामाजिक अभियान, तो उसके माध्यम से सफलता कितनी मिली और कितने बाल विवाह और इस तरीके के कुछ कुरीतियों को आपने रोका?
0: देखिए, ऐसे तो हम जो इधर इन दिनों में किए हैं,
1: जी
0: 700 ऐसे बच्चे हैं
1: जी जी
0: जिनका बाल विवाह तय था, होने वाला था बच्चियों का, उसको रोका गया, उनको वचन पत्र शपथ पत्र भरवाया गया और उस पर प्रधान और गांव के 2 गवाह और उसके अलावा गांव के 2 अलग आदमी सिग्नेचर करके वचन पत्र दे करके 700 दिए हैं सोनभद्र में,
1: जी
0: और करीब 500 इस तरह का वचन पत्र चंदौली में
1: जी
0: हुआ। 6 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनका कि बाल विवाह हो रहा था, बारात लगी सजी बजी थी, उसी समय हम लोग रुकवाए हैं
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: शादी रुक गई और उनके खिलाफ FIR हुआ, और ये इसका प्रचार बहुत हुआ कि पहले तो लोग बहुत हम लोग को गलत कहे कि भैया ये बारात और साग और सब्जी और पूड़ी ये सब बर्बाद हो
1: बर्बाद हो
0: गया
1: गया जी।
0: और लड़की की शादी नहीं, बड़ा दोष पड़ेगा। लेकिन बाद में जब उन लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो लोगों ने फिर हम लोगों को शाबाशी भी दिया।
1: जी सही बात
0: तो
1: है।
0: ये कुल मिलाकर के किसी के ये कहने पर कि आगे क्या होगा, इसका जश मिलेगा कि अब यश मिलेगा, यह बात सोचने की जरूरत नहीं है, ये कुप्रथा है, ये सामाजिक तौर पर कानूनी तौर पर ये अपराध है, इससे मैं तमाम लोग आज से लेकर शुरू से लोग लगे हुए हैं। इस काम को हम लोग चंदौली से लेकर के जो बॉर्डर का क्षेत्र है उसमें सोनभद्र तक इस काम को कर रहे हैं। बाल विवाह को रोकना ही रोकना है, बाल श्रम मुक्त भारत बनाना है, बाल श्रम मुक्त सोनभद्र बनाना है, इस काम में हम लोग लगे हैं,
1: जी
0: और सबका सहयोग रहा तो एक दिन यह इतिहास का विषय हो जाएगा।
1: जी जी
0: लोग कहेंगे कि बाल विवाह भी होता था क्या, बाल विवाह होता था क्या, यह बात लोग कहना शुरू कर
1: जी,
0: देंगे,
1: मतलब एक तरीके से ऐतिहासिक बात हो जाएगी।
0: ऐतिहासिक बात हो
1: जी,
0: जाएगी,
1: तो
0: लेकिन इसमें जन सहयोग की बड़ी जरूरत
1: बहुत
0: है।
1: है। तो सर अगर मान लीजिए कोई इसी तरीके से कानून का उल्लंघन करता है, बाल विवाह प्रथा को अपना करके आगे का काम करता है अपना, तो उसमें क्या कुछ सजा का प्रावधान या कुछ जुर्माने और भी होते हैं सर?
0: जुर्माना 2 लाख रुपया है, 6 साल का जेल है, और वो बहुत माने एक तरीके से सरकार की नजर बहुत जबरदस्त है, जो आदमी इस काम को करेगा

0: उसको तो जेल जाना ही जाना है,
1: जी
0: आप समझ लीजिए।
1: जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को बताया है
0: बस
1: कि
0: हमारा यही है कि गांव के जो प्रधान है, पंचायत प्रमुख हैं, आने वाले चुनाव में जो पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, इसमें बाल विवाह कौन प्रधान कितना रोका है, गली नाली सड़क तो बहुत लोग बनवाए हैं,
1: जी जी
0: लेकिन सामाजिक काम कितने लोग
1: कितने
0: किए
1: लोगों
0: हैं,
1: ने किया है।
0: कितने लोग ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल भेजे हैं, कितने लोग जो तमाम बच्चे की ट्रैफिकिंग होती है उनको ले जाते हैं लोग बाहर काम कराने के लिए, उन बच्चों को रोकने का काम कैसे लोग करते हैं, समझ लिए। 180 मुकदमा हम लोग करवाए यहाँ सोनभद्र में, 180 मुकदमा ट्रैफिकिंग का की करवाए
1: अच्छा
0: हैं,
1: अच्छा
0: जो लोग बाहर जाते थे काम करने ऐसे बच्चों को रोक करके मुकदमा कराए। तो ये प्रधान लोगों से ये सवाल गांव के लोगों को करना चाहिए कि आप बच्चों के हित के लिए क्या क्या करेंगे, आप जो स्कूल है उसके टॉयलेट में साबुन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पानी का व्यवस्था प्रॉपर करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रधान
1: जी
0: अगर होना है तो
1: जी
0: वो 10 सूत्री बच्चों का एक मांग पत्र हर गांव में दीवारों पर लिख जाना चाहिए,
1: सही बात
0: और
1: है।
0: उसको वो लोग अगर बाल विवाह रोकते हैं, बाल श्रम रोकते हैं, तो बच्चों के कुपोषण के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है इनको प्रधान बनाना चाहिए।
1: जी, भाई जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से संदेश दिया समाज को कि कैसे अपना अगर किसी सामाजिक काम को कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कीजिए कि आप समाज को उसका कुछ भला मिल सके। तो इस कुप्रथा को रोकना केवल सरकार या कानून की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य
0: आम
1: है।
0: लोगों का काम है।
1: यदि हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएं, शिक्षा को बढ़ावा दें और किसी भी बाल विवाह की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें तो इस प्रकार की कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा
0: समाप्त
1: सकता
0: किया
1: है
0: जा सकता है
1: और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रखने का सार्थक प्रयास किया जा सकता है।
0: एकदम।
1: तो महेशानंद भाई जी आप अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपका स्वागत।
2: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो
2: फिर क्या, फोन उठाइए वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: भैया
6: मुराओ भैया,
5: देखा ये रहन महेशानंद भाई जी जो उनकी सामाजिक कार्यकर्ता रहलन और के तरह से भैया अपने प्रयास से बाल विवाह रोके के जोन बाकी प्रयास कैलन है और बहुत ही जोन बाकी ओकरा में सफलता भी मिलल और इतना बढ़िया जानकारी अपन अचल भैया के बातचीत के माध्यम से मिलल।
6: तो देखा जानकारी जब मिलल तब बुल्लू यादव उनके संघाती लोगन के एगो छपरहिया से पंचायती के आगे बढ़ावल जाए।
5: बिल्कुल सुनल जाए भैया।

गंगा मैया के घाट अजब काशी करवट विश्वनाथ, गंगा मैया के घाट अजब। अरे

0: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: खेत बचाओ अभियान के बारे में कितना बढ़िया अपन केंद्रीय कृषि मंत्री भैया के बात सुने के मिलल। और निश्चित रूप से भैया देखा खेत बचावे के बात आवेला तो हम लोगन के अपन जैविक खेती के जौन बाकी और इशारा करेला कि हम लोगन के जैविक खेती अपने जौन बाकी जौन रसायन युक्त खेती होते हुए भैया अगर रसायन युक्त खेती हुई तो भैया देखा रसायन युक्त भोजन ही मिले और रसायन मुक्त भोजन चाहिए तो भैया देखा रसायन मुक्त खेती भी करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल तो और देखें सरकार के भी मनसा बा भैया या आपन भी मनसा यही बा मुराहू भैया कि सबसे पहले अब देखा शरीर से अगर काम लेवे के बाद तो शरीर स्वस्थ रखे के हुई।
2: बिल्कुल
3: अभी अगर माटी से अन्न लेवे के बाद भैया तो माटी के स्वस्थ रखे के हुई। अब माटी तबे स्वस्थ रही जब भैया ओकर देखभाल हुई और उचित ओकर भोजन मिली, जैसे इनकी अब जैविक के बात किलन, चाहे बर्मी के बात करें, चाहे नाडेप के बात करें, चाहे भी अपन हरी खाद के बात करें। अब इस समय देखा जवन भी किसान भैया लोग उर्द लगेले हम मूंग भैया,
2: बिल्कुल
3: वो देखा अब जब तोड़ाई हो जाए उनकर भैया, जब समय आई धान के रोपाई तो हरी खाद के रूप में कितना बढ़िया जौन बा उनके जौन फायदा करी कि भैया बिना यूरिया के भी रासायनिक खाद के भी अपन धान के अच्छा पैदावार ले सकल है।
2: बिल्कुल सही कहते हो नंदू भैया। और एक साथ साथ भैया देखा खरीफ के सीजन शुरू हो गए हुए और जैसे ही भैया देखा बरखा बुनी हुई हम लोगों के अपन खेत जोताई के साथ साथ भैया देखा फसल के बुआई भी शुरू हो जाए और निश्चित रूप से भैया देखा बुआई के बात आवेला तो मोटा अनाज के भैया देखा जौन हमेशा चर्चा होला या हम लोगों के अंचल में भैया देखा बुआई भी भरपूर मात्रा में मोटा अनाज होकाला जेकरा में भैया देखा मक्का हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, रागी हो गई, सावा हो गई, कोदो हो गई, ये तरह के जौन पोषक तत्व से भरपूर जो

0: मुरहू भैया बड़ा लगे कि भैया कहाँ मिली, अब ऐसा समय बा, लेकिन अब एकर बीज भी उपलब्ध हो जात बा, जोन बा अपन जहाँ भी बीज भंडार बा, राजकीय कृषि बीज भंडार, वहाँ से आप आसानी से एकर बीज अपन प्राप्त कर सकल है। और
1: एकदम जा
0: बिल्कुल भैया, और जौन भी देखें किसान भैया लोग पहले जौन बा खर पतवार से परेशान हो जाले,
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: भैया अब अपन देखा सावा के खेती करें भैया, खरपतवार से भी मुक्ति मिली। और एक देखें ई जोन बा मोटा अनाज के श्री अन्न के भी बारे में, मतलब एक नाम से जोन बा भैया
1: जानल जा रहा बिल्कुल
0: सुशोभित कैल गेल बा, और कहीं न कहीं जोन बा भैया इस शरीर खातिर एक मतलब समझ ला कि अब डॉक्टर भैया के यहाँ जाते समय कोनो पेट के बीमारी भइल न, भैया तुरंत भैया दवाई देवे से पहले ही बात कह दिए भैया कि मोटा अनाज खा भैया, सामा कोदो मेड़ो जोन भी अपन रागी बा
1: हाँ भैया
0: ओकर भी इस्तेमाल करा, तो कहीं न कहीं जीवन बचावे के बा, तो भैया अपन मोटा अनाज के तरफ आवे के हुई, और
1: एकदम
0: अपन अंचल भी भैया देखे मोटा अनाज के लिए मानल बा,
1: एकदम
0: और
1: जा
0: कहीं न कहीं एकर बाजार में मांग भी बहुत अच्छा बा मुराहू भैया।
1: हाँ भैया
0: अब मकई देख ला, मकई भैया जेकर की अपन घर घर में भैया 2 क्विंटल 3 क्विंटल पैदा होके, लेकिन मकई के भी इतना भैया अपन बाजार में ओकर कई तरह के प्रोडक्ट बन करके सामान बन करके बेचाए लागल कि
1: एकदम
0: भैया अगर मकई जैसे भी अपन खेत से बाहर आवत बा भैया चुमंतर हो जात बा, तुरंत भैया ले जाके बाजार में चल जात बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ओकरे साथ साथ भैया देखा, जब हम लोगन के मोटा अनाज जोन उत्पादन होला तो जैसा खाद

भद्र जनपद अंतर्गत कोन ब्लॉक के पिंडारी गांव में हमारी मुलाकात श्री द्वारिका सिंह खरवार जी से हो रही है। आप मोटा अनाज उत्पादन करने के जुगत अपनाते हैं और लगभग हर साल मोटा अनाज उत्पादन करके और उसका खाने में उपयोग करते हैं। बचा खुचा जो भी रहता है उसको बेच करके भी अच्छा मुनाफा कमाने के प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि मोटा अनाज जो भी है उसके जमाव अच्छा कैसे हो, इसका तरकीब हम लोग को जानना पड़ेगा पहले, तब जा कर के हम लोग जो है कि उसका उत्पादन के बारे में सोच सकते हैं। बताया जाता है कि ठंडे भूमि में ये मोटे अनाजों का जमाव बहुत ठीक नहीं हो पाता है। प्रयास करना चाहिए कि जब ज़मीन गर्म हो तभी इसकी बुआई हो जानी चाहिए, तो अच्छा जमाव होती है। क्या अनुभव है द्वारिका सिंह जी का, आपसे मुलाकात करते हैं, बातचीत होगी। द्वारिका सिंह जी, आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये मोटा अनाज के बात चलता है तो अभी तो गर्मी के मौसम चल रहा है, तो गर्मी में

0: यहाँ रखे हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: तो ये कई मुड़ हैं
0: बकरी 20 के
1: अच्छा।
0: आसपास बकरी हैं।
1: तो उतना बहुत लेड़ी हो जाएगा।
0: हाँ हाँ लेड़ी हो जाता है, सब खेतों में जाता है वो।
1: तो वो तो बहुत बताते हैं कि अच्छा खाद होता है उसका।
0: हाँ खाद होता है। और हम लोग जो है रासायनिक खाद का प्रयोग जो है कम करते हैं,
1: अच्छा
0: जैविक खाद का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है भाई आज के समय में।
0: हाँ
1: तो ये कितना क्षेत्रफल में समा बोई हैं इस बार?
0: एक बीघा में समा बोते हैं।
1: अच्छा हर बार?
0: हाँ हर समय एक बीघे में मकई बोते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो एक बीघा समा बोना है तो कितना बीज लग जाएगा उसमें?
0: उसमें बीज लग जाता है 1-1.5 किलो।
1: 1-1.5 किलो?
0: हाँ
1: अच्छा 1-1.5 किलो में 1 बीघा बोआ जाएगा।
0: बोआ जाएगा हाँ, काहे कि उसका बोवाई जो है घना नहीं होता है, पतले होता है।
1: अच्छा हाँ हाँ
0: हाँ
1: तभी तो गाछ फेंकेगा ना।
0: गाछ फेंकेगा
1: ज्यादा नजदीक नजदीक हो तो गाछे नहीं
0: हाँ
1: फेंकेगा।
0: गाछे नहीं फेंकेगा।
1: हाँ तो धुनिया घासो तो होता है वही?
0: हाँ घास भी होता है लेकिन अब उतना घास नहीं हो पाता है।
1: हाँ हाँ
0: सामा के बुवाई ताव से हो जाएगा ना,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: घसवा को दबा देता है।
1: दबा। अच्छा कभी
0: हाँ
1: कभार तो जौन बाकी एक समा थोड़ा बड़ा वाला होला तो वो और तो धुनिया घास
0: हाँ
1: लगभग एक ही जैसा दिखता
0: हाँ
1: है
0: एक जैसा दिखता है।
1: हैं?
0: हाँ
1: तो ये है। तो 1 बीघा में आप बो दिए 1-1.5 किलो मान लीजिए ना, तो पैदा लगभग कितना हो जाएगा?
0: पैदा लगभग हो जाएगा 3-4 कुंतल के आसपास।
1: हाँ
0: हाँ इतना हो जाएगा, उपज
1: अरे वाह
0: बढ़िया
1: ये तो
0: रहेगा।
1: बढ़िया बात है।
0: हाँ
1: तो ये मोटा अनाज की बहुत मांग भी है।
0: हाँ
1: तो ये देसी वाला है कि जो पहले जो बीज
0: पहले
1: रहा
0: का ही बीज है वो।
1: जो लाल लाल टाइप का
0: हाँ
1: रहा
0: लाल
1: था?
0: लाल टाइप का है।
1: अच्छा
0: हाँ पुरानी ये बीज
1: ये
0: है।
1: तो बहुत बढ़िया है।
0: हाँ
1: और या इस समय हाइब्रिड के भी आने लगा है समा भी,
0: हाँ
1: तो बहुत बड़ा बड़ा होगा।
0: हाँ वो तो खैर
1: और
0: उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हाइब्रिड
1: हाँ
0: वाला, जो
1: लेकिन
0: पुराने
1: उतना
0: है।
1: जोन घरेलू बीज जोन
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: वैसा ओकर स्वाद नहीं है
0: ना ही जो है मीठा है, अब इसका
1: ना,
0: स्वाद दूसरा है।
1: स्वाद दूसरा है। तो ये क्या करते हैं समा के?
0: सावा को जो है उसे भात बनता है,
1: मतलब खाते हैं घर ही?
0: खाते हैं
1: अच्छा
0: और आवश्यकता पर बिकता भी
1: तो
0: है
1: ये तो
0: कम
1: कूटे
0: बेसी।
1: में तो बड़ा दिक्कत होता है इसका।
0: दिक्कत तो खैर होता है लेकिन कूट जाता है।
1: ढेकी रखे
0: हाँ
1: हैं?
0: ढेकी रखे
1: हाँ
0: हैं,
1: ढेकी तो है ठीक है।
0: ढेकी है, मूसर है, ओखरी
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: इसके द्वारा जो है चावल तैयार कर दिया
1: अरे
0: जाता
1: पहलवा
0: है।
1: लोग जो है कि जितने ढेकी जाता चला में
0: हाँ
1: उतने मजबूत और स्वस्थ होते थे।
0: हाँ
1: अब आज जन बाकी कमजोर भी हुए लगे लोग।
0: कमजोर भी हो गए और आज कम से कम कुछ न कुछ घरेलू जो महिलाएं हैं कुछ करती हैं वो।
1: हाँ हाँ हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: जो पहले से हैं वो
1: हाँ
0: करती
1: वो
0: हैं।
1: करती
0: हाँ
1: हैं आजो
0: करते
1: तक कर रहे
0: आजो
1: हैं।
0: तक कर रही हैं।
1: सही कही सही।
0: हाँ
1: और जो आजकल के नवाल लोग हैं तो वो लोग भाई
0: अब
1: बस
0: वो लोग
1: कटाते हैं,
0: हाँ वो लोग उतना नहीं कर पाते हैं।
1: कहते हैं कि
0: हाँ
1: जाता के पीसी हैं, तो इससे शरीर भी थोड़ा स्वस्थ नहीं रहे।
0: हाँ
1: तो हम लोग की बात चलत रहे मान लो समा पर, ये तो बहुत अच्छा बात बताओ ना। अच्छा एक ते बझौर होला वो जौन पीला पीला नहीं का आकाश बांवर,
0: हाँ उसके
1: तो
0: कसबेवर
1: कभी
0: कहते
1: कभार
0: हैं।
1: ये सब में रहर हो गई, तिली हो गई, ये सब में बड़ा जोरदार पकड़ा ला वो। तो सावा में
0: सावा में नहीं पकड़ता है।
1: नहीं
0: हाँ
1: पकड़ता
0: नहीं
1: है?
0: पकड़ता है।
1: हाँ कोई कहा ला
0: हाँ
1: लो कि जैसे कि जौन खेत में लगातार होत आकाश बांवर उनमें सावा बोदा नट जाई
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: ऐसा सही बात है?
0: सही बात है। वो नहीं नठेगा, उसी होगा, उसमें
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: अच्छा पड़ेगा वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो मैंने आकाश बांवर से जो किसान भाई लोग परेशान हुए हैं तो वो लोग अगर वो खेत में सावा बो दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप बताए कि सावा के खातिर गोबर के खाद जरूरी है नहीं तो दूसरा बिना खाद के वही भी नहीं करेगा।
0: नहीं बिना खाद के नहीं होगा।
1: हाँ हाँ हाँ इतना मतलब जो भी पौष्टिक अनाज अगर उत्पादन करना है तो गोबर खाद जरूरी है।
0: जरूरी है।
1: तो उसमें गोबर खाद के साथ साथ आप लेड़ी की बात कर रहे थे,
0: हाँ
1: लेड़ी और गोबर में कौन ज़्यादा ताकतवर होता है?
0: ज्यादा ताकतवर लेड़ी होता है।
1: लेड़ी होता है ना?
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ गोबर से
1: हाँ
0: लेड़ी की ताकत ज्यादा है।
1: तो उसमें दीमक उमक शायद नहीं लगता है लेड़ी में?
0: नहीं नहीं लगेंगे। हाँ
1: लेड़ी में ना
0: नहीं लगेंगे।
1: जबकि गोबर में लग
0: हाँ
1: जाता
0: हाँ
1: है?
0: गोबर में लग जाते हैं, लेड़ी में नहीं लगेंगे।
1: वाह
0: हाँ
1: क्या बात है। और बकरी ऐसे भी चराई हूँ मैं थोड़ा निशाबे
0: हाँ
1: से है,
0: हाँ हाँ
1: आपके यहाँ तो जंगल पर्याप्त है?
0: हाँ जंगल है, जंगले में चरते हैं।
1: जंगले में चरते हैं?
0: हाँ
1: हाँ। तो अभी बैर मकोड़ा सब मिला ला बकरी के खाए
0: बैर
1: खातिर?
0: मकोड़ा तो खैर जंगल में कुछ हैं या कुछ तो खैर खत्म भी
1: कम
0: हो
1: हो
0: गए।
1: गए।
0: हाँ काम हो गए।
1: तो ये बकरी मतलब जंगल में चरा करके फिर घर पे बांधते
0: हाँ
1: हैं?
0: घर पर बांध
1: घर
0: देंगे।
1: में चारा देने की जरूरत नहीं है?
0: नहीं घर में चरा देने की जरूरत

0: नहीं है।
1: अच्छा अच्छा
0: खुलियाँ फिर जो है जंगल चरी हैं,
1: हाँ,
0: यहाँ बने हैं।
1: तो ये आप तो एकदम जो बाकी प्राकृतिक खेती पर टिके हुए
0: हाँ,
1: हैं,
0: प्राकृतिक खेती पर
1: हैं
0: टिके हुए हैं। हाँ
1: कि मतलब जो है कि बकरी चराना और बकरी की लेड़ी डालना और फिर हमें सामा उत्पादन करना, मकई उत्पादन करना।
0: हाँ,
1: तो मकई कितना?
0: मकई भी लमसम जो है 1 बीघे में
1: हाँ बोते हैं।
0: हाँ बोते हैं, और उसमें भी जो है लमसम मकई जो है हो जाता है 5 कुंतल 6 कुंतल।
1: 5-6 कुंतल। तो ये मकई कितना बोना पड़ता होगा 1 किलो में, अरे एक एक बीघे में?
0: मकई का बिहन भी उतना नहीं लगता है, उसको जो है आगे आगे हर चलाकर पीछे से बोवाई होता है।
1: एक एक डग पर बोवाई,
0: हाँ, 2-3 किलो लगेगा ज़्यादा से
1: दो
0: ज़्यादा।
1: तीन किलो
0: हाँ
1: लगेगा
0: हाँ
1: और 5-6 कुंतल हो जाएगा।
0: हाँ हो जाएगा,
1: तो वो भी एकदम शुद्ध
0: शुद्ध चीज है, और
1: हैं।
0: मकई पाचन क्रिया भी उसका अच्छा है,
1: हाँ,
0: और उसके खाने से कोई रोग व्याधि का भी कोई
1: नहीं होता
0: संभावना
1: है,
0: नहीं है।
1: संभावना नहीं है।
0: हाँ
1: तो बारी वोरी बनता है कि?
0: हाँ बारी बनता है, रोटी बनता है,
1: हाँ,
0: सब बनता है।
1: चूंकि जौन हम लोग बाजार में दरिया के जुगाड़ करते
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: वो बारी मतलब बड़ा एक नंबर के चीज़ है जो है। तो निश्चित रूप से ये मोटा अनाज। अच्छा, ये पाचन वगैरह के मामले में ये समा चाहिए, ये सब ठीक है?
0: ये सब पाचन के मामले में बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, लोग कभी कहला कि जिसे पेचिस उचिस पड़े लगल तो समा हमें काम देता है?
0: हाँ, समा काम देता है, उसका भात खाइए, रोटी खाइए,
1: हाँ
0: पेचिस का जो है आपका मार।
1: ना।
0: हाँ
1: अच्छा, कितनों खराब पेट होइल होए,
0: हाँ
1: कितनों
0: हाँ
1: पेचिस होए,
0: हाँ हाँ
1: बतावला लोग कि जोन बाकी रोटी वगैरह ओकर खा जाए तो सांस के खाए तो रातिये में मैंने वो ठीक
0: रतिये
1: हो
0: में
1: जाएगी,
0: प्रभाव कर देगा वो।
1: प्रभाव
0: हाँ
1: कर देगा,
0: हाँ
1: बार बार जाना नहीं
0: हाँ
1: पड़ेगा।
0: नहीं, बार बार जाना पड़ेगा,
1: ये तो
0: वो अच्छा चीज़ है।
1: कितना औषधि गुण से भरपूर है हैं। और आदमी ये सब छोड़ करके खाली धाने के पीछे।
0: धान तो अपना वो सब हाईब्रिड का चीज़ है, और उससे आदमी धाने गेहूं खा रहा है, लेकिन धान गेहूं से फायदा नहीं है, पर उसका
1: उपज बेसी
0: हाँ
1: है,
0: उपज बेसी है, दुष्प्रभाव जो है
1: ज़्यादा है।
0: हाँ ज़्यादा है
1: हाँ
0: उससे।
1: हाँ हाँ अब जैसे ये सब खाने से रोग व्याधि तमाम।
0: हाँ, रोग व्याधि भी जो है शांति होते हैं, अब उतना ही सब नहीं होता है उससे।
1: तो चूंकि आज लोग सब लोग बहक गिल बा, ये मोटा अनाज करे के नहीं सोचे, तो ये सब लोगों से का कुछ कहल चाहिए जो?
0: हम यही कहना चाहते हैं किसान भाइयों से
1: हाँ
0: कि मकई है, सांवा है, कोदो है, मजरी है, ये अनाज को ना भूलें।
1: जी जी जी
0: जब
1: जी
0: ये किसान हैं तो
1: हाँ
0: छत से अनाज को कमाइए,
1: हाँ हाँ
0: ये
1: हाँ
0: अनाज का विटामिन दूसरा है,
1: जी जी
0: और धान गेहूं तो खैर कमाई रहे हैं उसका बात अलग है, लेकिन इस चीज़ को ना भूलें,
1: ना भूलें।
0: इसको खेती ज़रूर करें।
1: जी जी जी जी तो श्रोताओं देखिए, ये थे द्वारिका सिंह खरवार जी, और आप कोन बला के पिंडारी गांव बिल्कुल सोन नदी के किनारे है और जब अमिला धाम के पास नीचे में, और ये आज भी एकदम पूरे प्राकृतिक खेती पर निर्भर हैं। और जिस तरीके पहले लोग बकरी गाय बहुत अधिक संख्या में रखते थे, उनके गोबर और लेड़ी खेत में डाला जाता था और उसी के सहारे टिकाऊ खेती करके बगैर सिंचाई के, बरसात के पानी और जो ऊपर के पानी के सहारे ही अच्छा अनाज उत्पादन होता था, ठीक उसी प्रकार आज भी आप करते चले आ रहे हैं और इतना पौष्टिक अनाज उत्पादन कर रहे हैं, लोगों को बताने के भी कोशिश कर रहे हैं इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। द्वारिका सिंह खरवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुराहू भैया।
3: हाँ भैया,
2: भैया देखा ये जानकारी रहल अपन मोटे अनाज सावा के खेती खातिर जोन बा विशेष तैयारी जोन ये रहल अपन द्वारिका सिंह खरवार भैया अपन भोला भैया से ये जानकारी रहल
3: बिल्कुल
2: सुनल
3: बिल्कुल
2: गई। और भैया हम तो यह कहब कि भैया अपन अंचल अब भैया ऐसे अछूता ना रहे, हर घर में भैया एकर उपयोग होके,
3: बिल्कुल भैया।
2: और तब जाकर के कहीं शरीर अपन ठीक रही। और देखे थे ये मुराहू भैया तोरे हाथ में बाजार भाव भी लग गई बा जोन बा घोरावल मंडी के,
3: एकदम भैया,
2: और बाबूलाल जोन बा
3: बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हुए भैया और पसेरी में हुए और एकदम ओके बाचत है भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: आलू
2: देखा इन राशन मोर भैया हुआ, और कहीं न कहीं जोन बा
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: हमेशा
3: बिल्कुल
2: जोन बा अपन पाती के माध्यम से इहो अपन जुड़ल रहल है। तो आज इन राशन मोर भैया के भी जोन बा घोरावल मंडी के बाजार भाव हो तोरे हाथ में बा, तो हम तो कहब कि बिना कोनो देरी के लिए भैया के बाँचता।
3: एकदम भैया। पसेरी में हुए
2: हाँ हाँ
3: भैया, आलू 30 से 35 रुपया पसेरी, टमाटर 110 से 115 रुपया, लौकी रहले 20 से 25 रुपया पसेरी, प्याज 100 से 110 रुपया, लहसुन 260 से 270 रुपया पसेरी।

करेला 75 से 80 रुपया, नेनुआ 50 से 55 रुपया पसेरी, लौकी लौकी रह भैया 20 से 25 रुपया, और भिंडी रहे 40 से 45 रुपये पसेरी, और हरा मिर्चा 200 से 225 रुपया पसेरी, पालक 80 से 90 रुपया, मूली 40 से 45 रुपया, खीरा रहे 60 से 65 रुपया, चुकंदर 70 से 75 रुपया, और बोड़ा रहे भैया 40 से 45 रुपया पसेरी, धनिया 180 से 200 रुपया पसेरी, बैगन 130 से 140 रुपया,

0: रहो भैया।
1: हाँ नंदू भैया,
0: उठो उठो मोरे राजा, बिहान भइले ही रहले अपन पुरान कोठिला के चावल भैया बुल्लू यादव उनके संघाती लोग
1: हाँ भैया।
0: भैया, इनकर भी जो मन फेर सुनल गेल। और देखा मौसम में उलट फेर हो रहल बा, अब
1: बिल्कुल
0: न्यूनतम देखा 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस आज के तापमान रहल मुराऊ भैया।
1: हाँ भैया,
0: और चला चलावत एक के बात कहल जाय
1: का भैया
0: कि भैया देखा गोबर आधारित जोन बा खाद से जोन बा जीवाश्म में वृद्धि होला
1: बिल्कुल।
0: भैया, कई तरह के माटी से अपन कई रोगन से बचावे ले। ऐसे भैया ये देखा समय बा कि भैया जहाँ भी आप गर्मी के खेत जुताई कैले हवा भैया, वो खेत में अभी जोन बा गोबर के खेत डाल देवे, डाल के भैया छोड़ देवे। जैसे ही पानी पड़ी
1: हाँ भैया
0: भैया आरी मेड़ अपन बांध के एक बार मिट्टी पलट हल से भैया ओके जोत दिहल जाए
1: एकदम
0: ताकि
1: एकदम।
0: खाद बिल्कुल मिल जाए। और न तो मुराहो भैया, पहले लोग खाए बिना परेशान रहे, अब भैया खा के परेशान बा लोग।
1: एकदम एकदम
0: तो
1: बिल्कुल सही
0: भैया
1: कह
0: खा
1: दिया।
0: के परेशान न रहे, खा के मजबूत रहे, आ खा के स्वस्थ

0: रहें, तो
1: एकदम
0: ओकरा
1: बिहार,
0: खातिर भैया अपन कुछ न कुछ अपन जोगाड़ कर ही के पड़ी, नियम
1: एक
0: अपनावे के पड़ी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: और
1: कहत हुआ। और जहाँ भी अभी भी बिया देखो गोबर अपने पड़ल हुए, अपने जहाँ नाडेप कंपोस्ट हम लोग बनैले ही जा, बहुत बिया लोगन अभी अपने खेत में नहीं डाल पैले हुए, बिना देर के लिए बिया देखा ओके डाल दे, और घड़ी की सुई भी धीरे धीरे
0: बिल्कुल
1: कहत हुए कि अपन
0: बिल्कुल। अब देखो
1: पंचायती।
0: कहल गेल बा कि भैया हो, जवन खेत में पड़े न गोबर उ किसान के जाना दूबर।
1: बिल्कुल
0: तब भैया हो, अब देखा घड़ी के इशारा बा कि आज के पंचायती यही समेटल जाए, फिर अगले पंचायती में मुलाकात
1: मुलाकात
0: हुई,
1: हुई,
0: बात हुई, तो सब
1: सब पंचन
0: पंचन
1: के
0: के
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

आकाशवाणी के हम उबरा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर शाम के 7 बज रहे हैं। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनते हैं। यह कार्यक्रम का पहला गीत फूल और पत्थर फिल्म से, आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं। हीट वेव के संदर्भ में, हीट वेव के समय शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हमें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बाहर निकलते समय सिर को ढक के रखें। धूप में अधिक देर रहने से चक्कर, कमजोरी और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में सावधानी बरतना आवश्यक है। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू को फिल्म गजब तमाशा में। इसी के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उपरा से बोल रहे हैं, समय सूचना और कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार बॉबी पत्नी इंद्रेश कुमार, जो ग्राम पटना पोस्ट सिल्थम रामपुर बरकुनिया जनपद सोनभद्र के रहने वाले हैं और 11 जून 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार से है, उम्र करीबन 22 वर्ष, लंबाई 150 सेंटीमीटर के आसपास, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है।

तेज बली पुत्र जवाहिर जो ग्राम धौरहा थाना कर्मा जनपद सोनभद्र के रहने वाले हैं और 13 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनका ओलिया इस प्रकार से है। उम्र करीबन 40 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इन लोगों के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। और अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको याद दिला दें, चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कानून की बात, ये कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर, जिसे आप लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होने के अंतर्गत सुन सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे से और रात्रि 8:30 पर।

शाम 7:45 पर, जिसे आप लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होने के अंतर्गत सुन सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे से और रात्रि 8:30 पर।

0: के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है, और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग

0: थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
1: जो दुर्घटना हुई है लखनऊ में, उसके क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत दो टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है, एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
2: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
3: कजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
4: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में।

0: उसका पैसा मुजफ्फर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
1: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजे है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:31। इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विधवा महिलाओं के अधिकार, इस विषय पर भेंटवार्ता सुनीति सचान एडवोकेट से सुमोना एस पांडे की बातचीत आपको सुनवाते हैं। कानून की बात कार्यक्रम में आज मैं सुमोना पांडे आपके साथ हूँ श्रोताओं। और आज हम जिस महिला वर्ग की बात करने जा रहे हैं वो वर्ग हमेशा से बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन अब सामाजिक परिदृश्य बहुत बदल चुका है और हम देखते हैं कि ऐसी महिलाओं को काफी सम्मान, काफी अधिकार भी मिलते हैं और वो उनके लिए सजग भी हो रही है। हमें अपने इन अधिकारों के बारे में बात करने की जरूरत है और आज हम बात करेंगे विधवा महिलाओं के सम्मान के बारे में, उनके अधिकार के बारे में। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व अपर महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय की अधिवक्ता सुनीति सचान जी। सुनीति जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: सुनीति जी। ये बात तो सही है कि जो इस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जो महिलाएं पहले प्रताड़ित होती थी, उनको कई बार मांगलिक कार्यों में आना भी मना होता था और कई अपमान सहन करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो हमारे श्रोताओं को ऐसी महिलाएं यानी जो विधवा महिलाएं हैं उनके अधिकारों के बारे में आप बताइए।
4: विधवा महिलाओं को कानूनी रूप से बहुत सारे अधिकार हैं
3: जी।
4: सामान्य महिला के तौर पर भी जो महिलाओं का अधिकार है वो तो उन्हें प्राप्त है ही
3: जी।
4: विधवा हो जाने के बाद उनकी परिस्थितियां थोड़ी बदलती हैं, उससे जो उनको कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हैं वो पति की मृत्यु के बाद पति की संपत्ति पर प्रथम अधिकारी वही होती हैं
3: जी।
4: जो श्रेणी विभक्त की गई है उसमें प्रथम अधिकार विधवा स्त्री का ही होता है अपने पति की मृत्यु के बाद। पैतृक संपत्ति में भी उसका अधिकार है बराबर का, जो उसके पति के हिस्से की चीजें हैं वो उसको प्राप्त होंगी। ससुर के जीवित रहते हुए उसका प्रथम अधिकार स्वतः नहीं आएगा, अगर ससुर की स्वार्जित संपत्ति है तो वो तो फिर जिसे चाहेंगे उसे देंगे, लेकिन अगर ससुर के जीवित रहते हुए भी अगर कोई संपत्ति पति के हिस्से की आती है वो उसे प्राप्त होगी।
3: और देखिए सुनीति जी, ये बात भी जग जाहिर है कि चूंकि ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं 23 जून को,

0: और ये कोई हमारे ही देश में ये कॉमन नहीं है, इस तरह के जो व्यवहार है अन्य देशों में भी है, तभी ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है।
1: जी
0: तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो ऐसी स्त्रियां होती हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि पति की संपत्ति में उसका अधिकार होता है, इसके अलावा किस तरह से उनके अलग अलग अधिकार होते हैं उनके बारे में बताइए।
1: यूजुअली देखा जाता है कि पति की मृत्यु हुई और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया, तो वो प्रताड़ित भी की जाती हैं, उनको उससे संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह से घरेलू हिंसा अधिनियम में सामान्य स्त्रियों को है, उसी तरह सामान्य स्त्री के रूप में ही उसे भी है। घरेलू हिंसा अधिनियम, बहुत गलत फहमी है लोगों को कि सिर्फ पति के खिलाफ है, ऐसा नहीं है।
0: जी
1: विवाहित स्त्री में ससुराल पक्ष के किसी भी पुरुष के खिलाफ, ससुराल पक्ष में ही नहीं, इवन लड़कियों को
0: मायके
1: अपने
0: में
1: माए,
0: जी
1: हाँ अपने
0: अगर
1: घर में भी, मतलब किसी भी पुरुष द्वारा घरेलू स्तर पर की जा रही हिंसा के अगेंस्ट वो लॉ है। तो अगर विधवा स्त्री के साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो इस अधिनियम के तहत भी कोर्ट में अपना संरक्षण प्राप्त कर सकती है। उसको वहां से, उस घर में रहने का जहां पर वो रह रही थी अभी तक, वहां पर रहने का अधिकार, या जो सास ससुर के साथ रहने का ही अधिकार, और मॉनिटरी भी उसको रिलीफ मिलती है, आर्थिक भी उसको वहां पर संरक्षण प्राप्त होता है। कोर्ट तुरंत आदेश करती है उस मामले में। उसको अपने, अगर सरकारी नौकरी में है तो वहां पर भी उसको डाइंग इन हार्नेस जो लॉ है कि पति की मृत्यु के बाद उसको, अगर वो थोड़ी सी भी शिक्षित है तो उस स्तर पर उसको नौकरी भी मिल जाती है।
0: यानी पति,
1: पेंशन पर तो अधिकार है ही उसका।
0: जी पति अगर सर्विस में रहे हैं
1: जी
0: और उनकी जगह पे उनको
1: उनको
0: संभावना रहती है कि उनको नौकरी मिल जाए, काफी हद तक मिल भी
1: मिल
0: जाती
1: भी
0: है।
1: जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
0: सुनीति जी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बालिका हो या बालक हो, उनके लिए शिक्षा ऐसे समय पे खास तौर पे जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, अपने आत्मसम्मान के लिए, वो अपने अधिकार के लिए खड़ी हो सकती है।
1: जी
0: अभी आप बता रही थी कि कुछ अधिकार ऐसे हैं कि नौकरी मिल सकती है, घर के जो अधिकार हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसी महिला कई बार अकेली होती है, उसे पता नहीं होता है कि किस तरह से हम इसके लिए अप्लाई करें या कैसे हम इसके लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो उसको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए?
1: देखिए, जब प्रताड़ना शुरू होती है
0: जी
1: तो उसके स्वयं के साथ होती है, अगर उसके बच्चे हैं तो कई बार क्या करते हैं लोग कि बहू को घर से निकाल देना, तो वो अपने लिए तो घरेलू हिंसा में चली ही जाती है, बच्चे उसके रख लेते हैं। रिसेंटली भी मेरे पास एक केस आया गोरखपुर का ही, सास ससुर ने उसके बच्चों को उससे छीन लिया है और उसको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, तो उसको ये संरक्षण प्राप्त है। सबसे पहले तो अगर उसको लगता है कि ये मेरा विधिक अधिकार है और उसका हनन हो रहा, तो वो थाने पर जाए,
0: जी
1: पुलिस संरक्षण प्राप्त करे, और फिर किसी वकील से संपर्क स्थापित करके वो अपने बच्चों के लिए गार्जियनशिप एक्ट होता है, या अगर उनके सास ससुर ने या किसी ने जबरदस्ती उसके बच्चे ले लिए हैं, तो फिर वो हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका होती है,
0: जी
1: उसको भी डाल सकती है। उच्च न्यायालय में डायरेक्ट पड़ती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, वो वहां पर डायरेक्ट, और वो उसमें इमीडिएट रिलीफ मिलती है,
0: जी
1: तुरंत इसलिए मिल जाता है कि उसमें तुरंत नोटिस इश्यू होगा और उनको बुला लिया जाता है।
0: जो भी दूसरे पक्ष के लोग
1: हाँ,
0: हैं।
1: यूजुअली न्यायालय दूसरे पक्ष को नोटिस इश्यू करके उनको तुरंत बुला लेता है, और चूंकि नैसर्गिक संरक्षक पहला, पिता के होते हुए भी पहली
0: हाँ
1: संरक्षक तो माँ ही है, तो उसमें भी माँ को वरीयता दी जाती है। फिर यहाँ पर तो पिता चले गए, तो फिर बच्चों को माँ के संरक्षण में ही रखा जाता है।
0: जी तो ये बहुत जरूरी है कि हर महिला शिक्षित हो और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। लेकिन हम समाज में कई बार ऐसा भी देखते हैं कि हो सकता है कि उसके परिवार में लोग कुछ ऐसे अच्छे भी होते हैं जो सोचते हैं एक नया जीवन उसको दिया जाए, अगर वो बहुत यंग एज में विधवा हो गई है, उसके लिए प्रयासरत होते हैं। फिर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने लाइफ को या अपने
1: आगे
0: जीवन को।
1: बढ़ाना चाहती
0: जी
1: है,
0: तो ऐसे माहौल के बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को, ताकि वो लोग भी प्रेरित हो सके और सोच सके कि हाँ अच्छा एक माहौल भी हमें मिल सकता है।
1: हाँ, जीवन का अंत पति की मृत्यु के साथ जो पहले का होता था, सती प्रथा वगैरह भी थी, समाज मिलके उसको खत्म कर देता था, एक्सेप्ट ही नहीं करता था इनफैक्ट कि पति की मृत्यु हुई तो सब उसका जीवन खत्म। लेकिन अब समय बदल गया है और स्त्री स्वयं में भी बदल गई है और समाज भी बदल गया, तो अब प्रयास होता है कि उसका पुनर्विवाह कर दिया जाए। पर हाँ, कुछ उसमें बातें हैं जानने योग्य कि कुछ विधिक अधिकार अगर उसको नौकरी नहीं तब तक मिली है, उसने अपना डाइंग इन हार्नेस में जो पति की मृत्यु के बाद सरकारी नौकरी में खास तौर से, अगर उसको तब तक नौकरी नहीं मिली है, तो उसको अगर विवाह दूसरा कर लेती है तो फिर उसको उस पर नौकरी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। संपत्ति अधिकार में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जो उसकी पति की है वो तो मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति में उसके बच्चों को मिलेगा, उसको प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, मैं जरूर

0: कहूंगी आपकी बात को आगे बढ़ा करके कि पुनर्विवाह के बारे में जरूर सोचना चाहिए। शिक्षित हैं तो अपने पैर पे खड़े होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और अगर हम संवैधानिक अधिकार के बारे में बात करें

0: तो कुछ हमारे अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगी।
1: वो तो सामान्य व्यक्ति के लिए जैसे अनुच्छेद 14 है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, लिंग के आधार पे जो भेद नहीं करना चाहिए उसका अधिकार है अनुच्छेद 15 में, तो ऐसे हैं तो वो उसमें कुछ विधवा के लिए विशेष नहीं है।
0: जी
1: वहां पर तो फिर सिर्फ ये है कि स्त्री पुरुष कास्ट क्रीड पर विभेद नहीं होना चाहिए, वो तो संविधान ने हमें संरक्षण
0: जी
1: प्राप्त
0: जी
1: कराया ही है।
0: तो जैसा कि आपने कहा पारिवारिक अधिकार है, तो अगर ससुर जी हैं
1: जी
0: तो उनकी संपत्ति में तो उनका अधिकार उतना नहीं होगा, लेकिन पति के,
1: पैतृक
0: हाँ
1: संपत्ति में उसको, क्योंकि पैतृक संपत्ति में उसके
0: जी
1: पति का अधिकार होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो पति के ना रहने पर उसको ही संपत्ति ट्रांसफर होगी, और
0: जी।
1: अगर उसका बच्चा है तो उसके बच्चे के नाम पर भी होगी।
0: तो जैसे अगर बच्चा है और उसके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तो कई बार ऐसी समस्या आती है कि वो अपने पैरों पे तुरंत कैसे खड़ी हो और कैसे अपने बच्चे को आगे पढ़ाए, अगर वो अलग भी होना चाहे जैसे, तो क्या उसको कोई ऐसा एकमुश्त राशि मिल सकती है अपने परिवार से जिसमें उनके पति रहे हैं, कुछ
1: देखिए,
0: ऐसा?
1: ये तो फिर तभी संभव है चूंकि उनको मेंटेन करने का उनके ससुर सास को दायित्व तो आ जाता है,
0: जी
1: स्वतः आ जाता है,
0: जी
1: और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो न्यायालय की शरण में जा सकती है। भाई अगर पालन पोषण उसका नहीं कर रहे हैं तो प्रताड़ना ही है, तो उसके लिए वो जा सकती है कि इतना संरक्षण प्राप्त हो यहाँ पर जिससे मैं अपना जीवन गुजर बसर कर सकूं,
0: जी
1: जब तक वो खुद के पैरों पे नहीं खड़ी रहती है।
0: और जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो उपहार या जो चीजें शादी के टाइम पे किसी महिला को मिलती हैं, तो वो दोनों पक्ष से मिलती हैं, लेकिन वो अधिकार फिर उस पर उसी महिला का ही होना चाहिए।
1: वो स्त्री धन हो जाता है
0: जी
1: जो उसको अपने विवाह के समय में या आगे पीछे किसी समय पे दिया जाता है, जो उसके जेवर वगैरह हैं, ये सारी चीजें गृहस्थी का सामान है, उस पर तो अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री का ही होता है।
0: यानी कि अगर कोई महिला ऐसी विषम स्थिति में आती है, तो ये जरूर है कि वो अपने आत्मबल को बनाए रखे, अपने को सबल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो आदमी टूट जाता
1: टूट
0: है जब
1: जाता है
0: ऐसी स्थिति आती है। लेकिन अगर वो शिक्षित है, अगर उसके बच्चे हैं जिनकी उनको देखभाल करनी है, तो एक विवेकपूर्ण व्यवहार की बहुत आवश्यकता होती है।
1: अधिकार।
0: और जहां तक अब जो हम समाज की बात करते हैं, तो हम लोग चूंकि आसपास देखते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारा परिवर्तन आ भी चुका है, लेकिन अगर नहीं भी आया है तो भी उसके लिए सजग रहना चाहिए हमें।
1: सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स अब आ रही हैं, जैसे कुछ स्कीम्स में आवास आवंटन में भी विधवा को वरीयता दिए जाने का है, और कुछ विधवा पेंशन वगैरह भी है मिलने का। और स्त्री धन की जहां तक बात आती है, अगर स्त्री धन कोई हड़प लेता है उसका, तो उसके लिए वो पारिवारिक न्यायालय में उसका वाद दायर कर सकती है।
0: जी, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकार भी कुछ होते हैं विधवाओं के, उनके बारे में कुछ आप बताना चाहें?
1: प्रशासनिक अधिकार तो शायद आप उसके बारे में बात कर रही हैं कि उसके प्रमाण पत्र वगैरह
0: जी
1: प्राप्त करना और बैंक खाते वगैरह, तो उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका प्रथम अधिकार विधवा स्त्री का ही होता है पति की मृत्यु के बाद, वो अपने पति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम से बनवा करके, उसके बाद उसके ये
0: आधार,
1: न्यायालय की प्रक्रिया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, तो उसमें वो जा करके अप्लाई करती है और उसके बाद वो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनता है जिसकी वो प्रथम अधिकारी होती है। उसके आधार पर ही बैंक वाले भी आपको, जैसे बैंक का पैसा उसमें नॉमिनी अगर नहीं है या है भी तो भी उसको देना पड़ता है, और वो सारे सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह बनने के बाद ही उनको वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, और उससे वो उसका संचालन उसके खातों का, संपत्ति में उसका सारा कर सकती है।
0: जी सुनीति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए सोचती है और कई योजनाएं भी लागू की हैं, उनको कई अधिकार प्राप्त हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको सजग होने की जरूरत है, और साथ ही साथ अगर वो अपने लिए एक अच्छा जीवन चाहती हैं तो उनको उसका पूरा अधिकार है, और वो उसके लिए चाहे न्यायालय जाना पड़े, हालांकि लोग कभी कभी कोशिश करते हैं कि नहीं आप वो सुलझ जाए, तो परिवार में बात हो जाती है, काउंसलिंग हो जाती है,
1: जी
0: लेकिन अगर न्यायालय पर जाना ही पड़े तो उनको जाने की जरूरत पड़ती है और वो जाती भी हैं। उसके लिए उनको अपने पैरों पे खड़े होना, यानी कि शिक्षित होना और सजग होना बहुत जरूरी है। तो आप चलते चलते हमारी इस वर्ग की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, और सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें अब इस तरह की प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत उनको सहायता प्रदान की जा रही है, और सामाजिक व्यवस्था में भी अब कतई शिक्षा, रोजगार और पुनर्विवाह के अवसरों में जो है उनको किसी प्रकार के भेदभाव नहीं रह गया है, अब हर जगह पार्टिसिपेट कर सकती हैं और वो अपने पुनर्विवाह के लिए भी सोच सकती हैं। इवन इस स्तर पर भी आने के बावजूद अगर मान लीजिए उनकी शिक्षा ब्रेक हो गई विवाह के कारण, तो वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं, उसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह जो हैं वो हैं, किसी वर्ग विशेष के हैं तो उसकी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है।
0: तो हम श्रोताओं आज बात कर रहे थे विधवा महिलाओं की अधिक

0: अधिकार के बारे में, संवैधानिक और प्रशासनिक और घरेलू अधिकार, जो भी अधिकार उनको प्राप्त है उनके बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी पूर्व अपर महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय की अधिवक्ता श्रीमती सुनीति सचान जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। और सुनीति जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताया। और अब हमारी जितनी भी वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सामने आकर अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकती है।
1: सजग रहने की आवश्यकता है
0: जी।
1: किसी भी स्त्री को जब से वो समझदार होती है, शिक्षित तो हो ही, सजग भी बहुत रहने की जरूरत और मुखर होने की आवश्यकता है
0: जी।
1: अपने अधिकारों के प्रति मुखर होंगी तभी वो अपना जीवन सुचारू रूप से और सामान्य रूप से जी सकेंगी।
0: बिल्कुल, अधिकारों के लिए बोलना पड़ता है, बिना बोले हमारी बात दूसरे तक कैसे पहुंचेगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो उसके लिए आपको सामने आना होगा। कई बार बातें घर में ही सुलझ जाती हैं, अगर आप बातें अच्छी तरह से पेश करें अपने परिवार के साथ, तो शायद न्यायालय तक जाने की
1: बातचीत से बहुत कुछ सुलझ जाता है
0: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीति जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। और श्रोताओं, अब मैं सुमना पांडे आपसे विदा लेती हूँ इस कार्यक्रम कानून की बात से। नमस्कार।

हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। शाम के 7:45 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं सबरस कार्यक्रम। सबसे पहला गीत अनुराधा पौडवाल और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, फिल्म जुनून।

श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं हीट वेव के संदर्भ में। तेज गर्मी में हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, क्योंकि सूती कपड़े पसीना आसानी से सोख लेते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। काले या मोटे कपड़ों से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए गहरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। बाहर जाते समय धूप का चश्मा, टोपी और छाता इस्तेमाल करें, ताकि शरीर और आंखें सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रह सकें।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में, और अब सुनिए सबरस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत है, फिल्म हम तो प्यार करेंगे।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही सबरस का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहली रचना आशा भोसले की आवाज में।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। ये रचना अनुराधा पौडवाल की आवाज में है।

आशा भोसले के गाए इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक बार फिर आप सुनेंगे रात्रि 8:30 से। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। सबसे पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म सनम तेरी कसम।

सुरेश वाडकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे प्रहार फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए अरमान फिल्म में किशोर कुमार को।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में अरमान फिल्म के इस गीत को, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली की रचना, आवाज लता मंगेशकर की है।

निधा फासली का कलाम आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर की आवाज में। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। लीजिए अब सुनिए चित्रा सिंह की आवाज में मुजफ्फर वारसी का ये कलाम।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे मुजफ्फर वारसी की ये रचना चित्रा सिंह की आवाज में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर

0: इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड़ से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का

0: क्षेत्र याजाली और होज पोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: I also refer to the unwarranted...
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: It has always been, is and will remain so.
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई। असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसर गीत कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं। हीट वेव के संदर्भ में, हीट वेव के समय शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हमें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बाहर निकलते समय सिर को ढक के रखें। धूप में अधिक देर रहने से चक्कर, कमजोरी और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में सावधानी बरतना आवश्यक है।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
6: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
7: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
6: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
6: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
8: भूले बिसर गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। आपको सुनवा रहे हैं कोतवाल साहब फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज में।

आशा भोसले के गए इस रचना के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
2: जी जी।
3: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन एआई से रिलेटेड और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
2: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
3: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
2: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
3: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
2: जी,
3: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
2: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
3: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हो तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है। तो तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है मोस्टली दिल्ली में ही होता है तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम जहां भी हो चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
2: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक स्कूलों संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं अभिभावक हैं या पूरा समाज है उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
3: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों आसपास में हों उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं सारे स्कूल्स में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो नवोदय विद्यालय संगठन हो समिति हो। तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के उन सब से यही आग्रह करूंगा निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे मिले या आपके संपर्क में आए उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
2: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: थैंक यू सो मच।
2: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन शॉर्टफुट थ्रो इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
0: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
2: जी
0: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
2: जी,
0: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक, बचपन में बहुत बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में

0: वजह है कि मेरे को लाइक आदत पड़ने के लिए विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
1: जी जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली सारा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, जिसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़ा लोग ऐसे मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ। एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत
2: तो
1: इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस,
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स। एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th grader दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इन साइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
3: तो ये मौका मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना। कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में। फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको, बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मैं तो फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर फ्रॉम हिम कि हाँ यू कैन डू, यू कैन सर्वाइव। तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था। फिर मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, भूल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में। तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो। तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
3: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
4: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
4: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेट कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट चेस प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है
1: बिल्कुल।
4: तो

0: वो सिर्फ एजुकेशन पे भागता है तो मेरा एक ही कहना है कि एजुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है।

श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं हीट वेव के संदर्भ में। हीट वेव के समय शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हमें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बाहर निकलते समय सिर को ढक के रखें। धूप में अधिक देर रहने से चक्कर, कमजोरी और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में सावधानी बरतना आवश्यक है। एक बार कहो, सुनवाते हैं आपको इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुलक्षणा पंडित और बपी लहरी की।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं। हीट वेव के संदर्भ में, तेज गर्मी में हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, क्योंकि सूती कपड़े पसीना आसानी से सोख लेते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। काले या मोटे कपड़ों से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए गहरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। बाहर जाते समय धूप का चश्मा, टोपी और छाता इस्तेमाल करें, ताकि शरीर और आंखें सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रह सकें।

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी बात। श्रोताओं, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं यशुदास की आवाज में। फिल्म है मान अभिमान।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 11 बजने को हैं और अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ

0: प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 6:50 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।